0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना सांझ के शो सिटी लाइट्स में हर रोज शाम 5 बजे।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: హిందీలోను అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాథ్ మై జయా భారతి. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की. भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी. दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया. सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा

0: रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देशभर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिन्दी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
3: आयुष्मान भारत पीएम जय,
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में

0: मान सागर क्षेत्र के दो अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हमले के कारण दो मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
3: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
4: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई।

0: फूलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
1: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सनत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा यह कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
0: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
2: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in centenary celebrations of UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Cabinet hikes minimum support prices for Rabi crops for 2027-28 marketing season. Government to launch auction of offshore mineral blocks today to unlock India's offshore mineral potential. Supreme Court rules out total ban on firecrackers ahead of Diwali. Favors balanced approach.
6: Saudi authorities arrest Omani co-pilot for stabbing captain and attempting to crash fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv. Prime Minister Modi describes Indian pilot Smith Machar a true hero for saving 174 lives. And in men's cricket, India beat the West Indies by 8 wickets in the second ODI in Guwahati to take an unassailable 2-0 lead. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. A report.
7: The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the Union Public Service Commission in 1926. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi will release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp, and a book titled 100 Landmark Judgments Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The program will witness participation of stakeholders from across the country, including chairmen and members of state public service commissions, senior officers of Government of India, academicians, UPSC officials and others. This event is part of the two-day program being held by UPSC. Yesterday, on the first day, Shatabdi Samaroh Manthan was held at Bharat Mandapam. Eminent speakers addressed the event and it was followed by panel discussions on various themes. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
6: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
8: Rabi season ki MSP badhane se
9: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the six major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
8: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP approve hue.
6: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnav said the Union Cabinet also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. The Ministry of Mines will launch the auction of offshore mineral blocks today. The ministry said that this marks an important step towards unlocking India's offshore mineral potential and strengthening the country's long-term mineral resource security. The auction comprises two offshore mineral blocks in the Andaman Sea region, which will be offered for grant of composite license. The ministry underlined that it is expected to encourage systematic exploration, attract investment and promote the adoption of advanced technologies for offshore mineral exploration and development. The Supreme Court has ruled out a complete ban on firecrackers ahead of Diwali and favoured a balanced approach. A bench of Justices M.M. Sundaresh and P.B. Varale indicated it will permit the use of certain firecrackers during Diwali but impose specified time limits, ruling out both a blanket ban and unrestricted bursting of crackers. The apex court stressed the need to strike a balance between religious sentiments and the harmful effects of air pollution. It said a complete ban could hurt the sentiments of people celebrating Diwali, while allowing firecrackers throughout the day will adversely affect the environment and vulnerable groups, including children, the elderly and the sick. The apex court was hearing a long pending matter concerning restrictions on firecrackers in Delhi NCR and other northern states during the period of severe air pollution. This is Akashvani giving you the news.

0: ఇప్పుడు వింటారు ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 అప్డేట్స్.
1: 26 ఐచి నగోయా.
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है यहां मौजूद धर्मेंद्र जी. और दोस्तों, हम लेकर आ गए आपके लिए द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स. घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम पहला अपडेट आज आपको जो देने वाले हैं वो है सेपक तकरो की दुनिया से. इंडिया हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द मेन्स क्वाड्रेंट इवेंट ऑफ सेपक तकरो आफ्टर दैट टू स्ट्रेट विक्ट्रीज इन द ग्रुप स्टेज. दिस मीन्स दैट इंडिया हैज अशोर्ड और बीन अशोर्ड ऑफ अनदर मेडल for our country at the Asian Games 2026. India defeated Vietnam in the men's quadrant group A match of the Sepak Takraw event. They won in straight sets by a margin of 15-12, 15-17, thereby defeating Vietnam 2-0. The rules, by the way, dosto, aapko ye bhi bata de that the rules state that both the semi-finalists will get a bronze medal at least. That means, Dharmendra, भारत को एक और मेडल आज अश्योर हो चुका है
3: जी. और उधर कुश्ती से तो काफी अच्छी खबर आ रही है साक्षी. भारत के नितेश सिवाज ने पुरुषों के ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बना ली है और भारत का मेडल वहां पर पक्का हो गया है. उन्होंने हांगझोउ एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंगोलिया के गंगकुयाग गानाबातार को 9-0 से हराया. इस जीत के साथ नितेश ने फाइनल में जगह बना ली और इसी के साथ भारत का 2026 एशियन गेम्स में कुश्ती का पहला मेडल पक्का हो गया है. नितेश ने इसी साल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था. फाइनल में उनका सामना ईरान के मेहदी बालिहाम जेहदेही या जापान के यूरी नागाजातो से होगा. फाइनल आज के बाद खेला जाएगा और हम आपको ये भी बताएं कि पहली बार 64 साल के बाद ग्रीको रोमन किसी रेसलर ने एशियाड के फाइनल में जगह बनाई है. और कुश्ती से ही एक और अच्छी खबर तो थी लेकिन अब थोड़ी सी उसमें गड़बड़ यह हो गई है कि मानसी अहलावत सेमीफाइनल में तो पहुंची थी लेकिन सेमीफाइनल में पराजित हो गई हैं. भारत की मानसी अहलावत महिला 62 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जापान की दो बार की वर्ल्ड चैंपियन नोनोका ओजाकी से 0-6 से हार गई. ओजाकी ने शुरुआत में टेकडाउन से 2 अंक लिए और फिर एक और टेकडाउन की बढ़त से 4-0 स्कोर कर दिया. उन्होंने दूसरे पीरियड में भी मानसी को अंक नहीं दिया. बाद में एक और टेकडाउन से स्कोर 6-0 कर दिया. मानसी अब रेपेचेज में खेलेंगी. यहां जीतने पर वो ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती हैं
2: जी. और अब वॉलीबॉल का आपको अपडेट देते हैं जहां से मैं आपको कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं देने वाली हूं. जहां पर हम आपको बता सकते हैं दैट पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया 3-0 इन द मेंस वॉलीबॉल क्वार्टर फाइनल टू एंड इंडियाज कैंपेन एट द एशियन गेम्स. पाकिस्तान टुक द ओपनिंग सेट 25-19 बिफोर एजिंग अ क्लोजली फॉट सेकेंड सेट 25-23. देन दे क्लोज आउट द कॉन्टेस्ट विद एन 18-25. Or rather should we say that resulted in Pakistan completely dominating India in a straight set victory. India's wait for a first Asian Games medal in the men's volleyball since 1986 continues after the quarterfinal defeat.
3: Aur ek khabar jaisi aapne kaha ki achhi khabar nahi hai. स्क्वाश में भी हमारी महिला टीम पराजित हो गई है और सेमीफाइनल का यह मुकाबला था हांगकांग के खिलाफ और भारतीय टीम इस मुकाबले में संघर्ष करती तो दिखी लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी. तन्वी खन्ना ने स्क्वाश महिला टीम इवेंट के सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ भारत की वापसी कराई. उन्होंने वर्ल्ड नंबर 33 ली का यी को 3-1 से हराया. उनकी जीत से भारत ने 1-1 की बराबरी हासिल की. तन्वी ने पहला गेम 4-11 से गंवाने के बाद वापसी की. उन्होंने अगले 3 गेम 13-11, 11-9, 13-11 से जीते. इससे पहले चान सिन युक ने अनहत सिंह को 3-2 से हराया. स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा और जोशना चिनप्पा को निर्णायक मुकाबला खेलना था लेकिन वहां वो पराजित हो गई
2: जी. एंड अ क्विक अपडेट फ्रॉम आर्चरी वेयर वी हैव चिकिता तानीपार्थी ओपन्ड द इंडियाज एक्शन ऑन डे 13 ऑफ द एशियन गेम्स 2026. हाउएवर शी कम्पीटेड अगेंस्ट नूरिसा दिया अशरीफा इन द क्वार्टर फाइनल ऑफ द वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी. शी हैज ऑलरेडी क्लिंच्ड 2 गोल्ड मेडल्स एट द इवेंट एज पार्ट ऑफ द मिक्स टीम एंड वुमेन्स टीम रिस्पेक्टिवली. बट शी डिड नॉट लुक एट अ बेस्ट टुडे एज अ सीरीज ऑफ 9s एंड 1-8 इन द फाइनल राउंड कुड ओनली टेक अ फाइनल स्कोर टू 43. As a result, we saw her crashing out of the Asian Games 2026 today. However, on a much more brighter and nicer note, she should be proud of her performance, having already secured 2 gold medals.
3: और एक अच्छी खबर आ रही है, बहुत ही अच्छी खबर है. भारत ने रजत पदक जीत लिया है सेलिंग में और ये जो रजत पदक है वो स्किफ इवेंट में मनु और नोबेल ने दिलाया है, ये बहुत बढ़िया खबर आ रही है साक्षी।
2: ऑफ कोर्स गुड न्यूज देयर एंड कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। बट क्रिकेट की दुनिया से भी धर्मेंद्र एक क्विक अपडेट अपने दोस्तों को बता देते हैं कि आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा कर अपनी जगह गोल्ड मेडल के लिए फाइनल के अंदर तय कर लिया है। यस, इन व्हाट वाज रेन अफेक्टेड मैच एंड अ शॉर्टेंड सेमीफाइनल वी सॉ बांग्लादेश सेटिंग पाकिस्तान अ टारगेट ऑफ 112 फ्रॉम 13 ओवर्स व्हिच पाकिस्तान वाज एबल टू चेस डाउन confidently and easily by a margin of 6 wickets with 9 balls to remain. And और एक बड़ी न्यूज जो है धर्मेंद्र वो ये है कि आज भारत और श्रीलंका भी आमने सामने होने वाले हैं दोस्तों इन द सेमीफाइनल मैच, एंड हूएवर विंस दिस गेम विल बुक अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स इन द फाइनल एंड विल बी मीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल ऑफ द एशियन गेम्स 2026।
3: जी, और अगली अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
2: जी जरूर, 10:30 आपको मिलेंगे हम एक बार फिर से विद द नेक्स्ट अपडेट। फॉर नाउ इट्स गुड बाय।
0: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం 102.2 MHz పై. ఇప్పుడు వినండి నమస్తే అమరావతి ఈ కార్యక్రమంలో చిత్రగీతాలు.
4: ఎల్ఐసి వారి బీమా ప్లాటినం లిమిటెడ్ ప్రీమియం ఆప్షన్ తో 7, 10, 12, 15 ఇంకా 18 సంవత్సరాల పాటు ప్రీమియం చెల్లి

0: का सामना कुछ ही देर में दक्षिण कोरिया के किम जोंग हो से होगा। गणेश मणिरत्नम ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के ची लुनचेन को 148-138 के अंतर से हराया। गणेश ने इस मुकाबले में सिर्फ दो अंक गवाए। स्कोर 29-28, 29-28, 30-29, 30-26 और 30-27 रहा। हालांकि चिकिता तनिवार थी, क्वार्टर फाइनल में हार गई और एक जो मेडल की उम्मीद उनसे थी वो पूरी नहीं हो सकी। काफी नजदीकी मुकाबला रहा और इंडोनेशिया की नुरिसा दियान अशरीफा ने उन्हें हराया। और तीरंदाजी में ये जो खबर रही, ये मिली जुली खबर है
1: जी। और जूडो की दुनिया से आपको कुछ खबर दे देते हैं, जहां यामिनी मौर्य क्वालिफाइड फॉर द वुमेन्स 57 किलोग्राम्स कैटेगरी क्वार्टर फाइनल इन जूडो, लेकिन क्वार्टर फाइनल से आगे जीत पाने के बाद जब वो आगे गई तो वहां पर हमने देखा कि यामिनी मौर्य लॉस्ट वुमेन्स 57 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल टू मंगोलियाज अरियुन जया तरबिश बाई यूको। एंड दूसरी तरफ अब बात करते हैं कि शी देन मूव्ड इनटू द रेपेचार्ज वेयर शी वुड बी फेसिंग जापान्स मियो श्रीकाने फॉर अ प्लेस इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच। दूसरी तरफ भारत की तरफ से हमने देखा कि इनुनगन भी तकलबाम एडवांस टू द वुमेन 70 किलोग्राम्स क्वार्टर फाइनल्स आफ्टर बीटिंग नेपाल्स पूनम श्रेष्ठ बाय इपो। शी विल टेक ऑन नॉर्थ कोरियाज मून सॉन्ग हुई नेक्स्ट।
0: और शूटिंग से अच्छी खबर आने का सिलसिला जारी है। अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के फाइनल में जगह बना ली है। हालांकि अनीश क्वालिफिकेशन में 9वें स्थान पर रहे, लेकिन इस प्रदर्शन के बावजूद उनसे पदक की उम्मीद साक्षी तो बनी हुई है
1: जी। और कयाक की दुनिया से भी आपको कुछ खबरें दे देते हैं, जहां पर इंडिया शिखा चौहान हैज बुक्ड अ प्लेस इन द वुमेन्स कयाक सिंगल फाइनल आफ्टर फिनिशिंग 10th इन द सेमीफाइनल्स। शिखा क्लॉक 246.16 सेकंड्स टू सिक्योर अ स्पॉट इन द फाइनल व्हिच विल बी बिगिनिंग शॉर्टली एट अराउंड 10:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, व्हिच शुड बी से दैट द मैच इज ऑल सेट टू हैपन नाउ।
0: और टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के सुमित नागल चीन के यिबिंग वू से पराजित हो गए हैं। स्कोर 4-6, 4-6 रहा। हालांकि सुमित ने वापसी की भरपूर कोशिश की, बहुत जोर लगाया, लेकिन भारी साबित हुए यिबिंग वू और उन्होंने इस जीत के साथ टेनिस में भारत की जो दमदार चुनौती हुआ करती थी उस पर पानी फेर दिया और टेनिस में भारत की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं।
1: जी, और सेलिंग की दुनिया से आज सुबह आई सबसे बड़ी खबर भारत के लिए, जहां इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुर्सिनिकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेन्स स्किफ इवेंट। इंडिया प्रिंस कुरिसनिकल नोबल एंड मनु फ्रांसिस क्लेम द सिल्वर। द इंडियन पेयर फिनिश सेकेंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड द गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 नेट पॉइंट्स। इंडिया रिकॉर्डेड 2 रेस wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China went on to claim the gold while Hong Kong took the bronze medal.
0: और ताइक्वांडो में भारत की रूपा बायूर महिला व्यक्तिगत पुंसे के सेमीफाइनल में 7.6100 अंक के साथ 5वें स्थान पर रही। वे फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई हैं। पुंसे में हम आपको बता दें कि खिलाड़ी अकेले कई मूवमेंट का प्रदर्शन करते हैं, इसमें किसी प्रतिद्वंदी से मुकाबला नहीं होता। प्रदर्शन का आकलन सटीकता और प्रस्तुति के आधार पर किया जाता है।
1: जी, एंड जस्ट बिफोर वी रैप अप दिस अपडेट, लेट्स गिव यू ऑल्सो वेयर इंडिया स्टैंड्स इन द मेडल टेबल एज ऑफ नाउ। भारत के पास इस समय कुल कर 62 मेडल्स हो चुके हैं। भारत इस समय मेडल टेबल में 8वें स्थान पर है विद द टोटल ऑफ 62 मेडल्स विच इंक्लूड्स 10 गोल्ड 22 सिल्वर 30 ब्रॉन्ज। दैट इज ऑल दैट वी हैड इन दिस अपडेट ऑफ 10:30 AM फॉर ऑल योर लवली पीपल। हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे सुबह 11:30 बजे। फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और धर्मेंद्र को दीजिए इजाजत। थैंक यू, गुड बाय।
2: మీరు వింటున్నారు 102.2 మెగాహెడ్స్ పై ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం. ఇప్పుడు వినండి రావోయే అతిథి. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్రగీతాలు. ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా మీరు వినబోతున్న పాట ఛాలెంజ్. ఈ చిత్రానికి ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఎస్ జానకి పాడిన పాట. సాహిత్యం వేటూరి.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: नमस्कार, आईजी नगोया एशियन गेम्स की अपडेट के साथ मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ हैं साक्षी मंडवाल। अभी अभी ये खबर आ रही है कि एक और ब्रॉन्ज मेडल भारत का पक्का हो गया। तीरंदाजों ने कल गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई थी और अभी अभी एक ब्रॉन्ज मेडल गणेश मणिरत्नम ने दिलाया है। तीरंदाजी में व्यक्तिगत जो इवेंट है कंपाउंड मुकाबला, उसमें उन्होंने अभी अभी गोल्ड मेडल जीता है। गणेश ने जबरदस्त फॉर्म दिखाई है इस मुकाबले में। 15 में से 14 निशाने परफेक्ट रहे और परफेक्ट 10 का उन्होंने स्कोर बनाया। गणेश मणिरत्नम ने यह मुकाबला 149-144 के बेहद आसान अंतर से जीता। हम आपको बताएं कि गणेश सिर्फ 20 साल के हैं। उन्होंने ट्रायल में ओजस देवतले को पीछे छोड़ा था। यह गणेश का पहला एशियन गेम्स है।
2: Right, on the other side, we now bring to you the news from the world of cricket, where India is up against Sri Lanka in the semi-final match today, and India, having been put into bat first today, was able to put on a total of 169 for the loss of 7 wickets in 20 overs, thanks to a very important and very resourceful contribution by Ishan Kishan, who put in 80 runs in 46 balls at a strike rate of 173.91, which included 4 fours and 5 sixes, when at one stage India was reeling at 87 for 4. It was a very confident and a very important contribution, the runs that came in from the bat of Ishan Kishan. And agar Sri Lanka ki baat kare to Sri Lanka ke bowlers ki taraf se ek all-rounded performance aaj hume dekhne ko mila, jahan par Tarendu Ratnayake ne 2 wickets liye, Sahan Archandinge ne 2 wickets liye, wahi वनुजा साहन ने एक विकेट लिया, लसित क्रूसपुल ने एक विकेट लिया और फर्नांडो ने भी एक विकेट लिया। सो वेल राउंडेड ऑल राउंडेड एफर्ट फ्रॉम द श्रीलंकन बोलर्स, बट नाउ श्रीलंका नीड्स 170 इफ दे वांट टू गो अहेड एंड विन दिस मैच अगेंस्ट इंडिया। द चेस कमिंग अप नेक्स्ट आल्सो।
1: और साक्षी, स्क्वाश से अच्छी खबर है, जहां भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। हालांकि सेमीफाइनल में भारतीय टीम को उम्मीदों के विपरीत 1-2 से हार मिली। पहला मैच अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ 2-3 से गवाया। स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा। तन्वी खन्ना ने वर्ल्ड नंबर 33 ली का यी को 3-1 से हराकर टीम को वापसी कराई। तन्वी ने मैच को 13-11, 11-9, 13-11 से वो जीता। लेकिन निर्णायक मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा होजे लोक से लगातार गेम में 4-11, 7-11, 9-11 से हार गई और भारतीय टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
2: जी, एंड इन द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग, इंडियाज अनीश भानावाला हैज मेड इट थ्रू द मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल आफ्टर फिनिशिंग 9th इन द क्वालिफिकेशन विद अ टोटल ऑफ 576 पॉइंट्स। भानावालास फाइनल सीरीज शील्डेड जस्ट 94, बट ही अर्नड अ प्लेस इन द फाइनल आफ्टर साउथ कोरिया हैड 3 शूटर्स फिनिश इनसाइड द टॉप 8। विद ओनली 2 शूटर्स फ्रॉम ईच कंट्री अलाउड टू क्वालिफाई, भानावाला मूव्ड इनटू द फाइनल। इट विल बी इंडियाज फाइनल शूटिंग इवेंट एट दीज एशियन गेम्स, विद भानावाला नाउ कैरियिंग द country's last medal chance in this discipline, and that match is scheduled for noon today Indian Standard Time.
1: Jiya, aur kal ki 3 gold ki hat-trick ke baad jo teerandazon ki hum baat kar rahe the, aaj ek bronze bhi aaya hai. Aur ab hum aapko ye bataein ki tennis mein ek nirasha phir se haath lagi hai. Purushon ke singles quarter final mein Bharat ke Sumit Nagal Cheen ke Yibing Wu se 4-6, 4-6 से हार कर बाहर हो गए। नागल के इस हार के बाद 40 साल बाद यह पहला मौका है जब भारत को टेनिस में कोई पदक नहीं मिला और खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
2: Right, in the world of taekwondo also, we can give you a quick update that India's campaign in the women's individual Pumse event in taekwondo ended as Rupa Beyer bowed out of the semi-final. She finished with 7.6100 points. This was not enough to finish amongst the 8 stars who qualified for the final.
1: और कुश्ती की बात करें तो भारत के लिए मिलीजुली खबर है। नितेश सिवाच ने पुरुषों के ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर एक पदक पक्का कर लिया है। नितेश ने हांगझोऊ एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंगोलिया के गंगखुयांग गनबातार को सेमीफाइनल में 9-0 से हराया। इस जीत के साथ नितेश ने भारत का 2026 एशियन गेम्स में कुश्ती का पहला मेडल पक्का कर दिया। नितेश ने इस साल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था।
2: Right, and as we wrap up this update, a quick look on the medal table also, with India standing still on the 8th spot in the medal table with a total of 63 medals, which includes 10 gold, 22 silver and 31 bronze. Here's hoping that the Indian medal tally carries on increasing and that India finishes on a good spot. For now, it's me, Sakshi Mandwal, and Dharmender saying goodbye to all our listeners. We'll be joining you once again at 12:30 p.m. in the afternoon with the updates of the ongoing Asian Games 2026. Thank you for tuning in. Goodbye.
3: మనా 2.2 మెగాహెర్ట్స్ పై మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం. ఇప్పుడు వినండి చిత్రగీతాలు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు మీరు వినబోతున్న పాట భైరవ ద్వీపం. ఈ చిత్రానికి ఎస్ జానకి బృందం పాడిన పాట.

0: కనకలత. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है. आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों.
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है. 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है. 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है. 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं. उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है. ये कार्यक्रम साल भर चलने वाले उन समारोहों का समापन है जो पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे. दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है. सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनके बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है. उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया. राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया जो अत्यंत प्रशंसनीय है. भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है. प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची. श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है. विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया. स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं. आइए सुनते हैं उनका संबोधन.
2: भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है.
0: भारत एशियाई खेल 2026 के 12वें दिन पदक तालिका को बढ़ने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होनी हैं. भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता. ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखुयांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया. भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said over the 100-year journey of UPSC, the generations, governments, technology and syllabi have changed, but the trust in this institution remains as unwavering as ever. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, Mr. Modi stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office, but to public service. He said today, 21st century India is moving forward with a new work culture and its core principle is pro-people, proactive, good governance.
1: हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है. इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा. हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो. इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है.
3: The program marks the culmination of year-long celebrations that commenced on the 1st of October last year, commemorating 100 years since the establishment of the UPSC in 1926. Prime Minister Modi has said safeguarding forests and wildlife is essential for maintaining nature's balance and securing a valuable legacy for future generations. In his message on the occasion of Wildlife Week 2026, Mr. Modi urged citizens to contribute towards protecting wildlife and their habitats. The Prime Minister highlighted India's achievements in wildlife conservation over the past decade, citing the success of Project Cheetah. He also highlighted India's role in promoting global cooperation for big cat conservation through the International Big Cat Alliance. The nationwide Ek Din Ek Ghanta Ek Saath cleanliness drive is being conducted as part of the Swachhata Hi Seva 2026 campaign. The objective of the campaign is to ensure cleanliness, improve sanitation and create awareness about hygiene and proper waste disposal among the general public. Several union ministers, chief ministers and senior officials are participating in the cleanliness drive across the country. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign, which began on the 17th of last month, will be observed to the 17th of October. The theme of this year's campaign is Swachhata Me Sehbhag, Swachh Bharat Vikasit Bharat, underlines the role of collective participation and shared responsibility in advancing the vision of a Swachh and Vikasit Bharat. The Ministry of Mines will launch the auction of offshore mineral blocks today.

0: శ్రోతలు చిత్రగీతాలు వింటున్నారు. ఇప్పుడు ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 అప్డేట్స్ వింటారు.
1: Enjoying the moment as it is. But from the show that's called Play It Cool, we'll take a little break now because this is now, indeed it is, time for the Asian Games 2026 update.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: Hello and a very warm welcome to all the listeners of All India Radio. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं धर्मेंद्र. हम लेकर आ गए हैं आपके लिए दोपहर के 12:30 बजे के ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स. एंड क्विकली स्टार्टिंग ऑफ विद क्रिकेट, इंडिया स्टैंडिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ मूविंग ऑन इन टू द फाइनल्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026 इन द इंडियन मेन्स T20 क्रिकेट. जी हाँ, आपको बता दें आज सेमीफाइनल के मुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बोलिंग करने का निर्णय लिया. In return, when India was put into bat first, India was able to put on 169 runs on board in 20 overs. As a result, Sri Lanka ko mila 170 run ka target jeetne ke liye. Aur uske contrast mein, when the Sri Lankan batters came down to bat, they in fact just completely piled up and became 45 for the loss of no wickets. Yani, there was a total collapse from the Sri Lankan team when it came to chasing down the target. 9.4 overs abhi pure hue hain. और श्रीलंका की पूरी टीम ऑलमोस्ट सिमट चुकी है 45 रनों में. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन मोर विकेट फॉर इंडिया एंड विद दैट इंडिया विल देन मूव ऑन टू सील देयर बर्थ इनटू द फाइनल्स. एंड एज आई से दैट टू ऑल आवर लिसनर्स, इट इज इन फैक्ट ऑल ओवर फॉर श्रीलंका फ्रॉम हियर एंड इंडिया हैज मूव्ड इनटू द फाइनल्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026 बाय कंप्लीटली वाइंडिंग ऑफ श्रीलंका इन जस्ट अ पॉल्ट्री टोटल ऑफ 45 रन. जी हाँ, श्रीलंका की पूरी टीम 45 रनों में सिमट गई. 10 ओवर भी पूरे नहीं हुए. 9.5 ओवर के अंदर भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए, वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया, अभिषेक शर्मा ने भी 2 विकेट लिए, रवि बिश्नोई के नाम एक भी विकेट नहीं रहा. लेकिन overall well-rounded team effort, collective effort put out by the Indians today when it comes to bowling. Definitely the batting star for India being Ishan Kishan, who was able to contribute 80 runs from his bat in mere 46 balls with a strike rate of 173.91, and of course the second batter being Vaibhav Suryavanshi, who made 38 runs in 21 balls with a strike rate of 180.95, thereby helping India put on 169 for the loss of 7 wickets in 20 overs. So congratulations to all the fans of cricket, to the Indian men's cricket team, because from here now India is set to meet Pakistan on this coming Sunday in the Asian Games 2026 for the final that will be happening in between India and Pakistan. Dharmendra.
4: Yeah, aur aaj hockey ka bhi to mukabla hona hai Bharat aur Pakistan ke beech mein, wo bhi kafi dilchasp hoga. Lekin hum aapko abhi ki ek jankari de dein ki Bharatiya purush quadrant team bhi semi-final mein pahunch gayi hai. Spectacular ke आखिरी ग्रुप मैच में वियतनाम को 2-1 से हराया और स्कोर रहा 10-15, 15-13, 15-7. पहला सेट गंवाने के बाद दूसरे सेट में 4-8 से पीछे थी भारतीय टीम और फिर दूसरा सेट जीता, फिर तीसरा सेट आसानी से जीतकर ग्रुप टॉप किया और सेमीफाइनल में जगह बना ली, यानी पदक यहाँ पक्का हो गया है.
3: जी, और शूटिंग की दुनिया से आपको बता दें दोस्तों कि शूटिंग का ये इवेंट अब कम्प्लीटली समाप्त हो चुका है. इंडिया का एशियन गेम्स में शूटिंग इवेंट के अंदर का सफर भी समाप्त हो गया. अनीश बनवाला हैज बीन एलिमिनेटेड इन द 7th प्लेस इन द मेंस 25 मीटर रैपिड पिस्टल फाइनल. अनीश शॉट अनदर 4x5 टू फिनिश विद 11 हिट्स फ्रॉम 15 शॉट्स. ऑल्दो दैट स्कोर वाज टाइड फॉर द 3rd बेस्ट एट द स्टेज, हिज लोअर क्वालिफिकेशन स्कोर मेंट ही लॉस्ट द टाई ब्रेक एंड वाज रैंक्ड 7th. विद दिस, इंडियाज कैंपेन इन शूटिंग ऑल्सो comes to an end and India finished with a total of 15 medals in shooting, 3 gold, 8 silver, 4 bronze.
4: Lekin nishana sadhne ke ek aur khel tirandazi mein bhartiya khiladiyon ka pradarshan lagatar acha hai aur jari hai wo pradarshan. Kal 3 gold medal jeete the, aaj ek bronze medal aaya hai aur ganesh ne ye bronze medal dilaya hai. 15 mein se 14 nishane unhone bronze medal ke muqable mein perfect 10 ke saath de, aur ganesh maniratnam ne ye muqabla 149-144 ke behad aasan antar se jeet liya aur is muqable ko jeet kar unhone ek aur medal bharat ke liye pakka kar diya hai. तो इस तरह से तीरंदाजी में लगातार अच्छी खबर आ रही है और स्क्वाश से भी अच्छी खबर है, जहां भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। हालांकि सेमीफाइनल में भारतीय टीम को उम्मीदों के विपरीत 1-2 से हार मिली हांगकांग के खिलाफ। पहला मैच अनाहा सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ 2-3 से गवाया। स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा। तन्वी खन्ना ने वर्ल्ड नंबर 33 ली का यी को 3-1 से हराकर टीम को वापसी कराई। तन्वी ने मैच को आसानी से जीता, लेकिन निर्णायक मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा होजे लेक से हार गई और इस तरह से भारत को कांस्य से संतोष करना पड़ा।
3: जी, एंड अ क्विक रैप अप ऑन द मेडल टेबल आल्सो एज टू हाउ इंडिया स्टैंड्स इन द मेडल टैली। वी विल नाउ टेल यू दैट इंडिया इज प्रेजेंटली प्लेस्ड एट द 8th पोजीशन विद अ टोटल ऑफ 62 मेडल्स, जिसमें 10 गोल्ड है, 21 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज आ चुके हैं। जिसमें आपको बता दें, आर्चरी की दुनिया से अभी तक 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज आया, एथलेटिक्स में 1 गोल्ड, 9 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज, बैडमिंटन में 1 ब्रॉन्ज, बॉक्सिंग में 3 ब्रॉन्ज मेडल्स, क्रिकेट में 1 गोल्ड आया है, कबड्डी 2 गोल्ड आ चुके हैं, कुराश में 1 ब्रॉन्ज आया है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में 1 ब्रॉन्ज आया है, रोइंग में 1 ब्रॉन्ज आया है, शूटिंग में 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, सॉफ्ट टेनिस में 1 ब्रॉन्ज, स्क्वॉश में 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, टेबल टेनिस में 1 ब्रॉन्ज, वेट लिफ्टिंग में 1 सिल्वर, रेसलिंग में 1 ब्रॉन्ज और वुशू में भी 1 सिल्वर। विद दिस इंडिया प्रेजेंटली प्लेस्ड एट द 8th पोजीशन ऑन द मेडल टैली। फॉर मी, फॉर नाउ इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड धर्मेंद्र सिंह गुड बाय टू ऑल आवर लिसनर्स। हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे दोपहर के 1:30 बजे, ब्रिंगिंग you all the live updates of the ongoing Asian Games. Thank you for tuning in.
0: Asian Games 2026 updates vinnaru. Ippudu Simha Chitraniki Hariharan Kausalya Pandya paata vintaru, Geetha Rachana Chandra Bose.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल

0: और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
1: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरफ फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, ये तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
4: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों

0: का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
1: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
2: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
1: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: మీరు వింటున్నారు 102.2 మెగాహెర్ట్స్ పై.

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
0: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
0: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ाबम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
2: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
0: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओ, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
2: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
0: श्रोताओ, मेघालय यानी मेघों का घर
2: जी।
0: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
2: जी हाँ श्रोताओ, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
0: किसेन वानियांग एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
2: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
0: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती
2: जी।
0: है। उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देख कर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
2: श्रोताओ कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
0: और किसेन ने श्रोताओ दूसरा

0: रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था,
1: जी
0: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
1: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा,
0: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
1: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
0: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया
1: जी।
0: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
1: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि चार बच्चों का जीवन बच गया।
0: श्रोताओं, किसेन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है।
1: जी,
0: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
1: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो, तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
0: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें और सुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है,
1: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
0: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने चार बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
1: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम तीन बातों को जरूर याद रखें।
1: जी,
0: तो पहली बात,
1: संकट में घबराए नहीं।
0: दूसरी बात,
1: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
0: और तीसरी बात,
1: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम।
1: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी।
1: जी,
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: अरे वाह मेघा, मजा आ गया।
5: आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
6: ना नहीं, अरे इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
7: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
5: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
8: प्लीज मेघा,
9: दिखा दो।
10: अरे चुप, देखो मैडम आ रही हैं।
11: चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
12: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
13: बहुत अच्छी।
14: मैडम, मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
15: जी मैडम।
3: शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
15: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
15: जी
5: मैडम, आप ही का तो इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
5: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
15: लीजिए मैडम।
3: हाँ, इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
10: अरे किताब मिली है।
3: हाँ, शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
15: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा, ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
10: सैनिकों के बारे में?
5: अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
15: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है, वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
15: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।

0: वाह,
1: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
0: हां केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
2: कितनी बहादुर है हमारे सैनिक।
3: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा, मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
4: मुझे भी।
5: इसके बाद मैं।
3: नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
6: हां हां, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
3: पर मेघा, इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
0: मोहित, एक मिनट, एक रास्ता है।
3: रास्ता है?
0: मेघा, क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ, कैसा रहेगा? अच्छा ना? अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
6: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
0: ठीक है, तो बच्चों, सोमवार को नंदनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
6: जी मैडम।
7: गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
6: जी मैडम।
0: अच्छा पहले ये बताओ, कैसी लगी किताब?
6: मैडम, बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
0: क्या बात है।
3: अच्छा मेघा, ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
6: बताती हूँ। सुनो, परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
3: वाह।
0: अच्छा मेघा, क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
6: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
0: शाबाश।
6: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
3: मेघा, ऐसा क्या किया था उन्होंने?
6: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
8: ओ मैडम जी।
0: जी मोहन भैया, क्या बात है, आ जाइए आ जाइए।
8: मैडम जी, आपसे कोई मिलने आए, कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
0: ओ हाँ हाँ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
8: ठीक है जी।
0: बच्चों, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
6: जी मैडम।
0: मेघा, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
9: बहुत वीरता है, बहुत ही वीरता का काम है।
3: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
10: काश काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह,
11: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
12: मोहित, लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
0: चुप, एकदम शांत। बच्चों, ये है मेजर अशोक।
13: नमस्ते सर।
14: नमस्ते बच्चों।
0: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
6: जी मैडम।
14: भाई, आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
6: धन्यवाद सर।
14: सबसे पहले तो मेघा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
6: धन्यवाद सर।
14: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
6: सर, मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
14: बिल्कुल ठीक। बच्चों, मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है

0: जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे, और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
1: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
0: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
2: एक हिंदुस्तान।
0: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे यह बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को यह नागवार गुजरा, और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
3: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
0: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ?
4: मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद।
0: दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
5: शाबाश जांबाजो, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, फायर फायर।
0: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
5: सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए। ओवर एंड आउट।
0: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
5: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
0: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
5: सर,

तभी एक जोरदार धमाका हुआ। सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे। उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भराया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी, जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्यूनिशन के भंडार पर आ गिरा। इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
1: जी
0: मैं आपका और खासतौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
1: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
1: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
2: जय।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ दोस्तों यहां पर मौजूद है धर्मेंद्र। हम लेकर आ गए हैं दोपहर के 3:30 बजे द अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 एंड द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे सो फार कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ हॉकी, जहां भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा कर हॉकी के सेमीफाइनल से आगे बढ़कर अब दे हैव बुक द प्लेस इन द गोल्ड मेडल मैच, यानी फाइनल्स में भारत ने अपनी जगह बना ली। आपको बता दें डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया टुक ऑन rivals Pakistan in the men's hockey semi-final that happened in the afternoon today for a place in the finals at stake. India entered the contest unbeaten after winning all 5 pool A matches, scoring 49 goals and conceding just 4. Dilpreet Singh led India's scoring charts with 9 goals, while Captain Harmanpreet Singh and Abhishek had also contributed 8 each so far till that game. India doubled their lead against Pakistan in the men's hockey semi-final. A penalty corner was awarded after Manpreet Singh's run down the left ended with a foul. Harmanpreet Singh made no mistake from the set piece, firing a powerful low drag flick through the post defender and rusher to make it 2-0, thereby taking a 2-goal lead over Pakistan. And then India were able to further solidify that lead by making it 3-1, with Pakistan also making an entry in between, scoring 1 goal for themselves. Later of which we found that Pakistan was able to tie the scoreline to 3-all, but with just 50 seconds left, Abhishek found the decisive goal after his effort took a deflection off a Pakistan stick. Pakistan had one last chance in the closing seconds, but a missed trap ended their hopes as the hooter sounded and India was able to solidify their position into the gold medal match. Dharmendra,
2: bilkul, aur ek samay to aisa lag raha tha ki kahin aaj ulat pher na ho jaye. Score 3-3 ki barabari par tha, lekin antim samay mein Bharat ki taraf se jo goal aaya usne us silsile ko barqarar rakha jo 2014 se lagatar chalta chala raha hai. Asian Games mein hum kabhi bhi 2014 ke baad se nahi haare hain Pakistan se. Aur hum aapko ye bhi bataye ki 2016 mein hamari team antim bar Pakistan se haari thi South Asian Games mein Guwahati mein. Uske baad se jeet ka silsila jaari hai aur aaj bhi ek nazdeeki muqable mein humne jeet hasil ki hai. Ab gold medal ki ummeed hai.
1: Right, and I think Dharmendra, aapke paas kuch updates hamare squash ki duniya se bhi aaj dene ke liye honge.
2: Bilkul, squash mein samay Bharat aur Malaysia ka purush semi final muqabla chal raha hai. Abhi dono teamein ek ek ki barabari par hain. Abhay Singh ne jo hai shuruaat ki thi NG Ian Yov ke khilaf aur wo pehla match 3-0 se haar gaye. Score 8-11, 8-11, 8-11 raha अभय सिंह ने जिस तरह से ये मुकाबला गंवाया. फिर वीर चोटरानी ने भारतीय टीम को वापसी कराई जब संजय जीवा के खिलाफ उन्होंने मैच जीता. चोटरानी ने मैच 3-0 से जीता. स्कोर 11-4, 11-8, 11-5 रहा और इस समय वी सेंथिल कुमार का मैच ए चंद्रन के साथ चल रहा है. मुकाबला कांटे का है, दोनों ने एक एक गेम जीता है और इस समय तीसरा गेम चल रहा है जिसमें स्कोर सेंथिल कुमार के पक्ष में 6-5 है.
1: राइट, आपको बता दें सेपक तकरो की दुनिया से भी कि इंडिया हैव सिक्योर्ड अ मेडल इन द मेंस क्वाड्रेंट सेपक तकरो आफ्टर बीटिंग म्यांमार 2-1 इन द फाइनल ग्रुप मैच. द विक्ट्री सेंड्स इंडिया इनटू द सेमीफाइनल्स एंड कीप्स देयर अनबीटन रन इंटैक्ट अक्रॉस 3 ग्रुप मैचेस. इंडिया फिनिश्ड टॉप ऑफ द ग्रुप एंड आर डेफिनेटली अश्योर्ड ऑफ अ प्लेस ऑन द पोडियम.
2: और कुश्ती में इतिहास लिखा जाना है अब से कुछ देर बाद, क्योंकि पुरुषों की ग्रीको रोमन शैली के 97 किलो ओवर के फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए नितेश सिवाच का सामना जापान के नकाजातो यूपी से होगा. इससे पहले नितेश ने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर इस एशियन गेम्स में भारत के लिए कुश्ती का एक पदक पक्का कर लिया. नितेश ने हांगझोउ एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंगोलिया के गंगखुयाग को सेमीफाइनल में 9-0 से हराया. नितेश ने इसी साल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था. हम आपको बता दें कि 64 साल बाद भारत का कोई ग्रीको रोमन पहलवान फाइनल में पहुंचा है.
1: राइट, एंड ऑल्सो फॉर ऑल द लवर्स ऑफ क्रिकेट आउट देयर, इंडिया वाज एबल टू डिफीट टुडे श्रीलंका बाय अ ह्यूज मार्जिन, पोस्टिंग 169 ऑन बोर्ड विद श्रीलंका रिक्वायरिंग 170 टू विन. बट श्रीलंका कंप्लीटली बंडल्ड आउट फॉर जस्ट 45 रन्स एंड एज अ रिजल्ट इंडिया पाकिस्तान नाउ आर सेट टू मीट इन द फाइनल्स व्हिच विल हैपन ऑन सैटरडे इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. दैट इज ऑल दैट वी हैड इन दिस लाइव अपडेट एट 3:30 PM. वी शैल I'll be tuning you right back in at 4:30 PM. Filhal ke liye, mujhe Sakshi Mandwal aur Dharmendra ko dijiye ijazat. Goodbye and thank you.
3: Meer vintunnaru 102.2 MHz pai Akashvani FM. Teen time. Chitra geetalu vintaru.

नमस्कार, पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ

किया। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। वस्तु और सेवा कर संग्रह में इस वर्ष सितंबर माह में कुल 14.7% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2,03,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। रक्षा मंत्री ने सैन्य नर्सिंग सेवा के 101वें स्थापना दिवस पर उन सभी नर्सिंग कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही वह राजपत्र अधिसूचना फर्जी है, जिसमें दावा किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सभी शनिवार सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। विभिन्न मंत्रालय आज नई दिल्ली में कर्तव्य भवन के पास स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत एक दिन एक घंटा एक साथ श्रमदान गतिविधि का आयोजन कर रहा है। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। जापान एशियाई खेलों में भारत पाकिस्तान को हराकर हॉकी के फाइनल में पहुंचा और भारत ने एशियाई खेलों में नौकायान के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस किरुसिंकल नोबेल ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ और आपके लिए जल्द हाजिर होगा हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नंदन वंदन अभिनंदन कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में आप सभी का स्वागत है।
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज आप सभी के समक्ष ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आपके लिए आपके शहर में आयोजित किया जा रहा है सेकेंड एडिशन ऑफ शेखो एफ इंडियन एयरफोर्स मैराथन, जिसको सिम के नाम से जाना जाता है, सिम 2026। और इस मैराथन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह।

0: धनखड़ जी जो हैं सेक्रेटरी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, आप हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सेखो इंडिया एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स मैराथन, और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी भी हैं। तो हम तहे दिल से सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे विंग कमांडर सत्येंद्र सिंह धनखड़ जी का। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गीतिका जी।
0: और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सिखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अपने जो श्रोता हैं उन तक पहुंचाने वाले हैं कि कैसे भले ही इस साल नहीं अगले साल से ही वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाल ही में आपने सुब्रतो कप इसका आयोजन किया, 65th एडिशन था, 18 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक सुब्रतो कप चला। जिस तरह से सुब्रतो कप आयोजित किया जा रहा है और आकाशवाणी के माध्यम से भी हम नित्य प्रति अपने श्रोताओं को बताते हैं कि किस तरह से टीम्स खेल रही हैं, कौन सी टीम्स हैं जो जीत रही हैं और किस तरह से जोश का माहौल वहां बना होता है मैदानों में, यहाँ हम आकाशवाणी के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। आप ये हमें बताएं कि इस साल का जो सुब्रतो कप आपने आयोजित किया, यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो हमेशा कार्यरत रहता है, स्पोर्ट्स को जन जन तक पहुंचाता है, किस तरह से रहा ये 65th एडिशन सुब्रतो कप का?
1: 65th एडिशन बहुत ही रोमांचक था। जैसा आपने कहा 18 अगस्त को शुरू हुआ। हम ये फुटबॉल टूर्नामेंट तीन कैटेगरी में कराते हैं, अंडर 17 गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज एंड अंडर 15 बॉयज। तो अंडर 17 गर्ल्स 18 को अगस्त को शुरू हुआ था दिल्ली में और उसका 27 अगस्त को समापन हुआ। झारखंड की टीम जो एक रिमोट लोकेशन से आती है गुमला, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और वो जीती। जो अंडर 15 बॉयज था वो 1 से लेकर 9 सितंबर बेंगलुरु में हुआ, जब वेस्ट बंगाल की टीम जीती। और जो ग्रैंड फिनाले था अंडर 17 बॉयज वो 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक हुआ। ग्रैंड फिनाले हमारा अंबेडकर स्टेडियम में होता 25 सितंबर को और सीआईएससी की टीम जीती। मैं सब श्रोतागणों को बताना चाहूँगा कि ये लगता एक महीने का हमारा टूर्नामेंट है, बट इसकी जो तैयारी है वो पिछले 6 से 7 महीने पहले शुरू हो जाती है। इसमें हर स्टेट की टीम पहले तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल के फाइनली स्टेट की एक टीम आती है, स्कूल की टीम जो यहाँ परफॉर्म करती है। तो इस पूरे अगर आप देखें ये स्प्रेड जो है इस टूर्नामेंट का वो एक महीने का नहीं, कम से कम 6 से 7 महीने का है। तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और हम एज ऑर्गेनाइजर तो हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, बहुत रोमांचक था
0: जी। कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ जब आप बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज होता है, ऊर्जाओं का एक्सचेंज होता है। और हमारे युवा भी, बच्चे भी चाहते हैं कल चलकर फोर्सेस ज्वाइन करेंगे, इंडियन एयरफोर्स में हम पायलट बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे। और इसी मुहिम के साथ इंडियन एयरफोर्स हमेशा कार्यरत रहता है। जैसे कि हमने कहा कि स्पोर्ट्स की दुनिया में तो बच्चे नाम कमा रहे हैं और हमारे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहीं ना कहीं हम फोर्सेस से ही सीखते हैं। अब बात करते हैं कि सिखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप कृपया करके हमें फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सिखों के बारे में जरूर बताएं। निश्चित रूप से उनका इस मैराथन से ताल्लुक जरूर है, आप कृपया करके हमें बताएं कि उनका जो योगदान रहा।

0: वो अकेले ऐसे ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स के जिनको परमवीर चक्र से वो सम्मानित हैं। तो यही एक उनको यूनिक चीज़ बनाती है जिसके इनके नाम से और इनके जो इनकी पदवी है उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी याद में हमने ये सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन शुरू करी।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगर हम इस सेकेंड एडिशन की बात करें, और सेकेंड एडिशन अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी उम्मीद, और कहते हैं कि जब हम अंतिम छोर में होते हैं ना, तो हम अगले की तैयारी करना शुरू करते हैं। अगर हम रेट्रोस्पेक्शन करें पहले एडिशन का, तो पहला एडिशन, उसकी क्या खास बात थी, और इस एडिशन में क्या कुछ खास होने वाला है, आपके माध्यम से जानना चाहते हैं।
0: पहला एडिशन हमारा 2 नवंबर 2025 को हुआ था। दिल्ली मेन सेंटर था रेस के लिए, पर हमारे बाकी जो भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशंस हैं उनमें 45 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री, ये मैराथन ऑर्गेनाइज कराई गई थी सेम डेट पे सेम टाइम पे। और तो रनर्स की जो टोटल अगर आप नंबर्स बोलें, दिल्ली में वो 12,000 थे और ऑल ओवर इंडिया को अगर हम पूरा पूरा सम अप करें तो अराउंड 45,000 पीपल रैन ऑन दैट डे।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। और उसी उम्मीद को आप आगे, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, उसे कहते हैं ना कि हम मिसाल कायम करते हैं, और फिर उस जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं, फिर सोचते हैं इससे बेहतरीन आगे और किया जाएगा। लाइफ का यही दस्तूर है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। अगर अब सेकेंड एडिशन की बात की जाए, सेकेंड एडिशन ऑफ शेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन, जिसे हम सिम के नाम से भी जानते हैं, इस एडिशन में क्या कुछ खास है, अपने आप में परिपूर्ण है, मैराथन की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन एक सवाल और मन में मेरे जहन में आता है। सेकंड एडिशन के बारे में बात करने से पहले, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है जो ये मैराथन हर साल कराई जा रही है?
0: ये कंसेप्ट जो था हमारे प्रेजेंट चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वो अपने आप में एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं। तो उनका विजन था कि शेखों साहब बहुत यंग थे जब उन्होंने शहादत दी, तो वो चाहते कि जो एयरफोर्स का यूथ है और इंडिया का यूथ है वो कोलैबोरेट करें, इसलिए एयरफोर्स मैराथन लेके आए जिसमें डिफेंस पर्सनल भी भागते हैं और सिविलियंस भी भागते हैं। तो एक उद्देश्य है कि फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ इसको मूव करना है। एयरफोर्स में तो के एक सिस्टम है जहाँ पे आपको फिटनेस पैरामाउंट है, पर हम चाहते हैं कि ये अमेलगमेट करें हम सिविलियंस के साथ भी, एंड इसको एक यूनिक प्लेटफॉर्म देके इसको आगे बढ़ाएं।
1: जी, और कहीं ना कहीं एक सिविलियन लाइफ के साथ, कहते हैं ना, कम्युनिकेशन, संवाद, मुझे लगता है शायद इस मैराथन के माध्यम से आसानी से हो जाता होगा।
0: बहुत लोग जुड़ते हैं और जो जुड़ जाते हैं वो सिर्फ जुड़ के ही रहना चाहते हैं।
1: जी, बहुत बढ़िया। अब अगर जब सेकेंड एडिशन की हम बात कर रहे हैं सिम के, तो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किन किन राज्यों में हो रहा है, इसके बारे में भी हमें जानकारी दें।
0: जैसे कि मैंने बताया, सिम 4 अक्टूबर 2026 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली एडिशन होगा, और हमने कुछ मेजर सिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया जो हमने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे डिफेंस पर्सनल भी और सिविलियंस भी भागेंगे। अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट करें तो नॉर्थ में चंडीगढ़ मेजर सिटी है, ईस्ट में गुवाहाटी है, अगर आप वेस्ट साइड आएँ तो मुंबई और जोधपुर है, आप सेंट्रल साइड आएँ तो ग्वालियर है, और अगर डाउन साउथ इंडिया में जाएँ तो बेंगलुरु एंड तिरुवनंतपुरम है। ये हमारे मेजर लोकेशंस हैं जहाँ रन होगा, बट ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, और बड़े और छोटे एयरफोर्स स्टेशन में भी ये रन साइमल्टेनियसली कंडक्ट होगा, दिल्ली प्लस और अक्रॉस इंडिया जैसा हमने पिछली बार किया था।
1: बहुत खूब। 8 अक्टूबर हम सभी के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए, ना केवल वायुसेना के लिए, हमारे लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मैराथन उसका प्री सेलिब्रेशन है?
0: आप बिल्कुल कह सकते हैं, हमारा एयरफोर्स डे है जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इस बार हमारा 94th एयरफोर्स डे है, एंड एयरफोर्स डे वीक इज़ गोइंग ऑन, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन है।
1: बहुत खूब, आपने बोला 94th हम एयरफोर्स डे मनाने जा रहे हैं, तो इस मैराथन से हमारी क्या उम्मीदें हैं?
0: देखिए, पिछली बार जैसा मैंने पहले भी कहा कि पिछली बार हमारे 45,000 रनर थे, तो इस बार हमारे हमें उम्मीद है कि नंबर डबल होगा और हम जो 94th का फिगर है, 94th एयरफोर्स डे, हम उस नंबर को पाना चाहेंगे।
1: जब हौसले बुलंद हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, और भारतीय वायुसेना इसी बात की मिसाल है, और इस मिसाल को कायम कर रही है सेकंड एडिशन ऑफ सेखों इंडिया एयरफोर्स मैराथन 2020।

सिक्स यानी कि सिम 2026 इसका आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को. विंग्स ऑफ करेज, जी जब हमारे ये जाबाज हवा में उड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय धरती से परचम लहराते हैं जीत का.

0: फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कामयाल, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो आपको जानकारी दे रहे हैं सेकंड एडिशन ऑफ सिखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026, जिसे आप सिम 2026 के नाम से भी पुकार सकते हैं। और जब जब आप पुकारेंगे तब तक भारतीय वायुसेना आपके साथ होगी और आपके लिए निरंतर अविरल बहती रहती है, जैसे कि हवा, जैसे कि परिंदे। और भारतीय वायुसेना की ये मुहिम आपके लिए ही है बस। हम जानना चाहते हैं आपसे सतेंद्र जी कि बहुत से लोग सुनने के बाद आतुर हो रहे होंगे कि काश हम भी, क्योंकि सिविलियंस के लिए ये भी मैराथन खुली हुई है, हम भी कैसे इसका हिस्सा बने। तो कैसे हिस्सा बन सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, आप हमारा मार्गदर्शन करें।
1: ये जो मैराथन की रजिस्ट्रेशन थी वो हमारी वेबसाइट है sekhoifmarathon.in, आपको उस पे साइट पे जाके रजिस्टर करना होता है। वो हर साल ये साइट कांस्टेंट यही रहेगी, लास्ट ईयर भी यही थी, कंटिन्यू रहेगी। अगर इस बार एडिशन की बात की जाए सिम 2026 की, तो 1 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी और 15 सितंबर को ये रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। तो हमें 10 दिन चाहिए होता है इस इवेंट को कराने के लिए, तो 15 सितंबर को हमने बंद करके अब वी आर फोकसिंग ऑन टू कंडक्ट द इवेंट, प्रिपरेशन ऑफ द इवेंट।
0: जी जी, तो कहते हैं कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह फर्स्ट एडिशन सफल रहा, हम कामना करते हैं कि सेकंड एडिशन, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो

0: पूर्ण हो। और कहते हैं कि जब हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिंदगी यानी कि भारतीय वायुसेना आपको फिर मौका देगी, थर्ड एडिशन में आप जरूर हिस्सा ले पाएंगे। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि आप साइट पर जाकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी अर्जित कर सकते हैं, तो अगले साल जब आप हिस्सा बनना चाहें तो आप साइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन कर अगले एडिशन का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जानकारी हमेशा काम आती है, आज नहीं तो कल जरूर। अब अगर बात की जाए वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड एडिशन में, वो भी बहुत उत्सुक होंगे कि हम इस महाआयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए वहाँ फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, किस तरह से हम रुक करेंगे, तमाम बातें जहन में चलती हैं। उन लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: हाँ, अब आप जो करंट सिचुएशन है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। आज हमारा एक्सपो स्टार्ट हो गया है मैराथन का, जो सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा तेजस ग्राउंड रेस कोर्स में, और कल भी होगा 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो जिनकी बिप कलेक्शन और बाकी जो हमारे गुडी बैग्स हैं वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। रेस डे जो 4 अक्टूबर को है, उसमें एक तो इसमें यूनिक है, हमने दिल्ली मेट्रो से टाई अप किया हुआ है, तो सबको हर जो जितने भी रनर्स आ रहे हैं उनको हम एक फ्री टिकट दे रहे हैं दिल्ली मेट्रो की। वो येलो लाइन, वायलेट लाइन और ब्लू लाइन, इन तीनों को उसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच सकते हैं जहाँ पे इवेंट है। 4:30 फर्स्ट फ्लैग ऑफ, 5:30 है, तो 4:30 के आसपास आप वहाँ पहुँच जाएँ। और एज़ फार एज़ फैसिलिटीज़ कंसर्न, हम जैसे आप एंटर करेंगे आपके लिए एसी वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, सेंटर आपके लिए सारे हाइड्रेशन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल है। एन रूट आपको हाइड्रेशन, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार एंड अ प्रॉपर मेडिकल कवरेज थ्रू आउट द रूट एंड विद इन द एरिना ऑफ JLN विल बी अवेलेबल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स।
0: जी, एक्सपो में और कुछ क्या खास होने वाला है? क्योंकि जब हम एक्सपो जाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि शायद हम भारतीय वायुसेना से और भी ज्यादा रूबरू हो पाएंगे, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी अर्जित करने के लिए हम उस गंतव्य तक जरूर पहुंचते हैं। तो वो लोग जो एक्सपो का हिस्सा बनेंगे वो निश्चित रूप से मैराथन के बारे में जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या और कुछ खास है जिसको देखने के लिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आप पहुंचे?
1: बिल्कुल, एक्सपो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर लास्ट टाइम गए हमने एक ओपन अरेना में रखा था, पर इस बार हमने एक ह्यूज स्ट्रक्चर, जर्मन टेंट्स लगाए हैं, एयर कंडीशनड है वो। अगर अगर मैं आपको फ्लो के थ्रू ले जाऊं, आप जैसे एंटर करते हैं तो एक वॉल लगी हुई है जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट जो इस बार पार्टिसिपेट करें, एक एक इंडिविजुअल का नाम वहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ चेक कर सकते हैं आई एम पार्ट ऑफ दैट इवेंट और नॉट। अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं, हमारा एयरफोर्स का स्टॉल भी है, हमारी बैंड की परफॉर्मेंस लाइव है, और क्राउड बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। मैं अभी 2 घंटे पहले की बात बताता हूँ, लोग इंडियन एयरफोर्स की ट्यून्स पे वहाँ डांस कर रहे थे, दे वर इन्जॉइंग द फुल फ्लो। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस है, यू मस्ट गो। दूसरा, एक इंडियन एयरफोर्स फैसिलिटी दे रही है, तेजस ग्राउंड इज जस्ट नियर टू लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम बस की फैसिलिटी दे रहे हैं। जो लोग अपना मेट्रो से आ रहे हैं तो वो बस से हम कम्यूट कराएंगे, उनको ड्रॉप करेंगे मेट्रो स्टेशन से टू द वेन्यू एंड बैक। तो इस फैसिलिटी को जरूर अवेल करें।
0: जी, एक प्रश्न और यहाँ उठता है कि क्या ये एक्सपो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए ही खुला हुआ है, या आम जनमानस जो सेकेंड एडिशन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं पर उनके मन में जिज्ञासा है कि चलो तेजस ग्राउंड चलते हैं और इस एक्सपो के माध्यम से ज्यादा जानकारी अर्जित करते हैं, क्या वो लोग भी वहां पहुंच सकते हैं?
1: इंडियन एयरफोर्स दिल बहुत बड़ा है, हम ओपन अपने दोनों ओपन हैंड से सबको वेलकम करते हैं, जो
0: आसमान
1: आ रहे
0: जितना,
1: हैं बिल्कुल
0: आसमान जितना बड़ा है।
1: आसमान स्पेस तक हम आउटरीच करते हैं, तो आएं और इस एक्सपीरियंस का मजा लें।
0: वाह, क्या बात है! तो आपके लिए ये बहुत ही प्यारी सुखद जानकारी, भले ही आप सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 इसका हिस्सा ना बन पाए हो, समय पर रजिस्ट्रेशन ना कर पाए हो, लेकिन जैसा कि विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना का दिल आसमान से भी कहीं ज्यादा बड़ा, कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, जिसका कोई अंत नहीं, वो अंतहीन है, वो है भारतीय वायुसेना। तो दिल बहुत बड़ा है, आप जाएं और कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा जरूर बनेगी, जरूर उठेगी कि काश मैं भी भारतीय वायुसेना में होता, या काश मेरे बच्चे भी कल भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विसेज दें। और ये आचार व्यवहार का एक सुखद माध्यम है जिससे मोहब्बत की जाती है, उससे मिलने जरूर जाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। आप तेजस ग्राउंड इस एक्सपो को देखने के लिए जरूर पहुंचे। और आप सभी के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए ये नगमा हमारी ओर से।

0: कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी से साझा करना चाहेंगे दोबारा सेकंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 यानी कि सिम 2026 इसका आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को। और इसके संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो सेक्रेटरी हैं एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में। आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल हैं सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी की। तो आपका पुनः स्वागत करना चाहते हैं हम सत्येंद्र साहब। अब बात ये उठती है कि हम ना कभी कभी बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं कहीं जाने से पहले। वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस मैराथन का हिस्सा बनने वाले हैं एक दिन पहले ही ना मन में कहते हैं कि पेट में जो तितलियां हैं उड़ने लगती हैं,
1: बटरफ्लाइज
0: कि कल सुबह जल्दी उठना है, पहुंचना है, क्या होगा, कैसे होगा, उन तमाम लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी एक्सपो में अगर आप जाओ तो वहाँ पे हमने सारा लेआउट्स, टाइमिंग्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रहे हैं, पर नेवरदलेस उसके बाद भी हम एक ट्रिगर मैसेज थ्रू व्हाट्सएप एंड एन ईमेल सबको भेजेंगे बिफोर द इवेंट कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, क्या क्या एनरूट होने वाला है, पूरी जानकारी उसके अंदर होगी तो वो अपनी बटरफ्लाइज सेटल कर सकते हैं एडवांस में।
0: क्या बात है, और अपनी बटरफ्लाइज को वहाँ वहीं उड़ाए मैदान जंग कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं, फोर्सेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो वो सारी तितलियां उड़ने के लिए आतुर हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: अब सवाल ये उठता है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो निश्चित रूप से 4 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे समय से पहले ही, लेकिन समय क्या है, किस वक्त रिपोर्ट करना है?
1: हाँ, पहला जो हमारा फ्लैग ऑफ है 21 किलोमीटर का, वो 5:30 बजे है, तो हमने जो रिपोर्टिंग टाइम नॉर्मली 1 घंटा पहले रहता तो 4:30 उनको रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्ट करेंगे और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर आएंगे, उसके बाद उनका जुम्बा सेशन होगा, वार्म अप होगा और फिर 5:30 फ्लैग ऑफ होगा।
0: क्या बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जिनके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर कुछ है या अपने वेरिफिकेशन के लिए उनको क्या दस्तावेज दिखाने होंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे भी पहुंचे गंतव्य पर जो ये कहें कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन आप भारतीय वायुसेना के परिसर, उस वक्त भारतीय वायुसेना का परिसर है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या वो अन्य गंतव्य जो अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है ये मैराथन, तो वहां पर सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए क्या फैसिलिटी
1: हाँ,
0: है?
1: आज जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्सपो चल रहा है तो यहाँ बिब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें नाम और उनके डिटेल्स होते हैं, तो ये सब बिब सारे रनर्स को दी जाती है और एक मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन है जो उनको उस दिन अपनी टी शर्ट के साथ पहन के दौड़ना है, तो जो उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो रीड करता है मूवमेंट्स के लिए, तो ये बिब जो पहन के आएंगे उनको ही जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होंगे अलाउ करेंगे, अदरवाइज बाकी लोग एंटर नहीं कर पाएंगे।
0: जी, तो आपके लिए प्रतिबंधित है अगर आपके पास, जैसा कि हमें सतेंद्र साहब ने कहा, विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर साहब ने, कि अगर आपके पास अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए बिब नहीं है तो आप अंदर एंट्री नहीं पा सकते हैं, लेकिन उम्मीद कायम रखिए अगले साल आपको फिर मौका मिलेगा। अगर आप इस मैराथन रेस की बात की जाए तो इसकी यूनिकनेस क्या है, क्या खास बात है
1: ये?

0: अपने आप में बहुत ही एक यूनिक रेस, मैं इसलिए कहूँगा मैराथन्स होती हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड होती हैं, पर ये मैराथन के साथ एक, इसको हम इवेंट काउंट करेंगे बिकॉज ये शोकेसिंग इंडियन एयरफोर्स की भी है। आज हम सिविलियन वर्ल्ड के साथ मिलके कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, अगर हम उनको कुछ दे रहे तो हम इंडियन एयरफोर्स की माइट भी उन्हें दिखाना चाहते हैं। तो नॉर्मली अगर आप कोई मैराथन देखो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आउटर एरिना से हो जाती है, वहीं पे से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है, लोग अपना मेडल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम होता है और अपने घर चले जाते हैं। बट ये एक टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जब लोग दौड़ के वापस आएंगे, वो अपना मेडल लेंगे, अपनी रिफ्रेशमेंट्स लेंगे, तो उन सबको हम अशर करेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स का एक्चुअल रौद्र रूप देखने को मिलेगा।
1: क्या
0: इन
1: बात है,
0: टर्म्स ऑफ स्काई डाइविंग, हमारी
1: वाह,
0: एयर वॉरियर ड्रिल टीम है वो परफॉर्म करेगी, हमारी बैंड है वो परफॉर्म करेगी, एंड मैनी मदर मोर एक्टिविटीज। तो आप, एक इवेंट है जो आपको मिस आउट नहीं करना है, आपको सिर्फ रेस नहीं, रेस के पोस्ट रेस के जितने इवेंट्स हैं वो भी जरूर देखने
1: मैं सोच रही हूं कि मैंने कुछ मिस कर दिया है समय पर रजिस्ट्रेशन
0: पर
1: ना करवा कर।
0: जैसा
1: अच्छा,
0: आपने कहा कि हमेशा मौका मिलता है,
1: बिल्कुल। और भारतीय वायुसेना, जैसा कि आपने कहा कि विशाल है और उस आसमां की तरह है, आसमां को छूने जैसी बात है, तो ये आपको मौके देती रहती है और निश्चित रूप से अगले एडिशन और भी सुखद होगा। लेकिन इस एडिशन की अगर बात की जाए, और विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी ने कहा है कि बहुत यूनिक है, इसका हिस्सा बनिए और फिर देखिए जो अनुभूति आप अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे, आप ताउम्र उसको दोहराएंगे और कहेंगे कि अगले एडिशन में भी हम हिस्सा जरूर बनेंगे इस मैराथन का। अब बात आती है, जैसे कि आपने स्वयं बताया कि अलग अलग स्टेशन पर एक साथ ही कार्यक्रम होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है, तो क्या सच में बताइए एक साथ होने वाला है?
0: ये बिल्कुल, ये वो तो आप कहते हैं ना, एयरफोर्स प्रिसीजन पे बिलीव करती है,
1: वाह,
0: जो हमारा मिशन है वो प्रिसीजन है। तो हमारा मिशन यही है कि एक ही टाइम पे शुरू होना, एक ही टाइम पे ख़त्म होना, एक ही दिन करना। तो ये हमारा प्रिसीजन को हम सबको, दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम इतना, हमारा जबरदस्त प्रिसीजन है कि हम उसको आउटरीच कर सकते हैं, बेशक हम कोलोकेटेड ना हो, अक्रॉस इंडिया स्प्रेड हो, पर हम उसको अचीव कर सकते हैं।
1: ठीक उस तरह जिस तरह से हमारा एक कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स है जो ठीक 4 बजे अलग अलग केंद्रों पर सुनाई देता है, तो आपके और हमारे बीच में एक समानता तो यह हो गई कि हम प्रेसेशन यानी कि डिसिप्लिन, समय को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, और फोर्सेस की यही खास बात है और आकाशवाणी की भी यही खास बात है कि समय हमारे लिए सर्वोपरि है, सही समय पर बड़ी बड़ी जंग जीती जा सकती है।
0: जब भी हम आई थिंक एक मंच पे एक ही चीज डिस्कस कर रहे
1: वह
0: हैं।
1: क्या बात है, और हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, हम यूं ही एयरफोर्स, भारतीय वायु सेना का परचम लहराते रहे। परचम आप लहरा रहे हैं, लेकिन उस परचम को हम अपने हाथों में लेकर दुनिया तक पहुंचाएं। अब एक बार फिर से बात आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो है मैराथन के लिए लोग भागेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे मन से तन से, और यही सोचेंगे कि हमें जीत हासिल करनी है। एक बार दोबारा से हमारे सभी सुनने वालों को ना कैटेगरीज के बारे में आप बताएं, और ये भी बताएं कि जब हम किसी प्रतिस्पर्धा में का हिस्सा बनते हैं तो जीत में हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, वो अवार्ड जो इस मैराथन के माध्यम से उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को मिलने वाले हैं उसके बारे में भी जिक्र करें।
0: हाफ मैराथन्स नॉर्मली 3 कैटेगरी में होती है, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। 21 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर टाइम रन होता है, कंपटीशन होता है, 5 किलोमीटर नॉर्मली फन रेस होता है। पर हमने ऐसा नहीं किया, हम चाहते हैं तीनों कैटेगरी में कंपटीशन हो। तो हमारे 21K, 10K और 5K तीनों कॉम्पिटिटिव हैं, और तीनों में जो भी ओपन कैटेगरी एंड डिफेंस कैटेगरी में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे सबको प्राइज मिलेगा, एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वहीं पे होगी JLN में। एंड एक अच्छा अमाउंट है, 25 लाख के आसपास हमने ईयरमार्क किया है फॉर द इवेंट। तो ऑल द बेस्ट फॉर द पार्टिसिपेंट।
1: डिफेंस पर्सनल और सिविलियंस के लिए अलग अलग अवार्ड कैटेगरीज हैं।
0: हर हर रेस में डिफेंस के लिए अलग है और सिविलियंस के लिए अलग है। जो जिन्होंने जैसे डिफेंस ने रजिस्टर किया तो वो उसमें कॉम्पीट करेंगे, और सिविलियंस का जो हुआ है उसमें कॉम्पीट करके दोनों को अलग अलग प्राइज मिलेंगे।
1: जी
0: कैटेगरीज दोनों के लिए अलग अलग है।
1: जी क्योंकि हमारे भारतीय वायुसेना के या डिफेंस पर्सन्स जो हैं वो तो सक्षम हैं, और किसी भी कहते हैं जंग को लड़ना उनके लिए नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जहां हमने ये सोच लिया कि बस ये जीत हमारी है, वहां आधा काम खत्म, हमें हमेशा तैयार रहना है, हमेशा अपने आप को गियर अप करना है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं जानना चाहती हूँ, जब भी कोई पार्टिसिपेंट रजिस्टर करता है तो

0: उस वक्त उसकी शारीरिक सक्षमता कितने मायने रखती है? क्या उसे कोई मेडिकल फिटनेस फॉर्म सबमिट करना होता है?
1: ये अगर आप फॉर्म देखें तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे मैराथन्स की, कि उसको ही और शी हैज़ टू टेल के ही इज़ मेडिकली फिट टू अंडर गो। उसको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, और हम उसको कंसिडर करते हैं अगर कोई इंसान सेल्फ डिक्लेयर कर रहा है तो वो फिजिकली फिट है।
0: जी, सबसे पहले अपने शरीर को हम स्वयं जानते हैं, और जब हम ये मानते हैं कि हमें हमें कोई परेशानी नहीं, तो हम यही कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं। अब यही सवाल मैं डिफेंस पर्सनल्स के संबंध में पूछना चाहूँगी। वो डिफेंस पर्सनल जो इस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं, उनका भी वेरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस पर्सनल्स ऐसे भी होंगे जो सेवानिवृत्त तो हो चुके हैं और अब भले ही सेवा में नहीं है, फोर्सेज में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सेवाओं का हिस्सा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन किस माध्यम से होता है?
1: ये इसको इसको स्मूथली हम ईज करने के लिए हमने एक्सपो में एक काउंटर्स बनाए हैं, वेरिफिकेशन काउंटर्स, जहाँ पे हमारे सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस वो आ सकते हैं। वो अपना अपना आईडी कार्ड दिखा के वो अपने बिप कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस बहुत स्मूथ है, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप जाएंगे वहाँ पे, बहुत ईज है, डिफरेंट काउंटर्स हैं, आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं।
0: वाह, क्या बात है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लेकिन हम यही कहेंगे कि यहाँ आपको आसमां छूने का मौका दिया जा रहा है, आप बिल्कुल बिना किसी भय के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि भारतीय वायुसेना आपके साथ है, आपके लिए कार्यरत है, और आपको ये सुनहरा मौका दे रही है कि आप हिस्सा बन सके सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026।

0: व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आज मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी एयरफोर्स स्टेशन में बैठी हुई हूँ, और भले ही हमारे साथ यहाँ पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी यूनिफॉर्म में है, पर ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस नीली पोशाक ने ना अपनी रंगत स्टूडियो के अंदर बिखेरी हुई है और मैं इस रंग में बहती चली जा रही हूँ और आसमान के किसी छोर को ना पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आपको दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और भारतीय वायु सेना जो हर साल, यूं कहूंगी मैं कि हर वक्त यही कोशिश करती है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से सभी भारतवासियों को जोड़े, और इसकी पहल, इसकी मुहिम सुब्रतों कप और अब सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन के माध्यम से की जा रही है। ये सेकंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन का आप खुद साक्षी रहे हैं, किस तरीके का माहौल होता है?
1: अगर मैं कहूँ, मतलब वो कहते हैं गूज बम्स, तो ये एक पहला वर्ड होगा। अब मैं अपने श्रोतागण को बोलना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ के माध्यम से इमेजिन करें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की हरी घास, ओपन एरिना, वाइट फ्लडलाइट वहाँ पे है। हमारी जो टी शर्ट की थीम है वो वाइट कलर है विथ ट्राई कलर थीम। तो जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में तारे होते हैं ना, एक तारों की पूरी चादर बिछी हुई है। तो अगर कोई हाइट पे खड़ा होकर देखे तो उसे ऊपर भी तारे दिखेंगे और जमीन पे भी तारे दिखेंगे। तो ऐसा माहौल होता है कि मन करता है बस ये देखता ही जाए।
0: वाह क्या बात है, आपने कहीं ना कहीं कहते हैं रेडियो के माध्यम से वैसे भी हमारे जो श्रोता है ना उनकी आंखों के आगे चित्र घूमने लगते हैं, मेरी आंखों के आगे साक्षात आपके शब्दों से चित्र बनने लगे हैं और मैं महसूस करने लगी हूँ कि कितना भव्य माहौल वहाँ होने वाला है। आप खुद को महसूस करने वाले हैं उन हवाओं में, फिजाओं में, जिनकी कल्पना आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने भर मात्र से कर ली होगी। भले ही आपके मन में अब द्वंद्व भी होगा, परेशानी भी होगी कि हम क्यों इसका हिस्सा ना बन पाए, क्योंकि हम कहते हैं कि जिंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देती है, तो तीसरे एडिशन का आप हिस्सा जरूर बन पाएंगे। अब बात करें और जानकारी हमारे पास वहां पर प्रावधान है, कितना आसान कितना सरल है जब हमारे पार्टिसिपेंट्स वहां दौड़ेंगे चलेंगे भागेंगे, उनके लिए आप बताएं।
1: जो रेगुलर रनर्स है, अगर जे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देखा जाए तो 21, 10 और 5K का स्टैंडर्ड रूट रहता है। इसकी पूरी जानकारी हमने एक्सपो में दे रखी है, बट ये सारी जानकारी थ्रू मेल भी लोगों के पास गई हुई है। फिर मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन दोबारा बताना चाहूँगा कि 21 किलोमीटर जो है वो पूरा ल्यूटियंस डेली में घूमते हुए कर्तव्य पथ पे जाती है। और जब वापस हम आते हैं तो जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है, उसके राउंडल के थ्रू आती है। तो एक यूनिक चीज़ है। नॉर्मली रेसेस वहाँ से नहीं होती हैं, पर हमने परमिशन ली है वहाँ की, तो आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देंगे। और जो 21 किलोमीटर के रनर्स होते हैं, नॉर्मली 7, 7:15 के आसपास वहाँ से निकल रहे होते हैं और उस टाइम सनराइज हो रहा होता है। तो वो एक ऐसा पिक्चरिस्टिक माहौल होता है कि आपको थकावट भी आपकी दूर हो जाती है और आनंदित हो जाते हैं। एज फार एज 10K गोज, तो 10 किलोमीटर भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से निकल के लोधी रोड के एरिया के आसपास सर्कुलर रूट है, वहाँ पे करते हुए वापस आएगी। और 5 किलोमीटर भी उसका जस्ट हाफ है, उसी रूट पे रहेगी।
0: बहुत खूब, तो आपके लिए पूरे प्रावधान पूरी फैसिलिटी भारतीय वायुसेना ने कर रखी है, बस आप उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। अब एक ना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ लूं,
1: अरे बिल्कुल।
0: वो जो गुडी बैग आप देने वाले हैं
1: हाँ,
0: उसमें पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या मिलने वाला है?
1: ये
0: कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले मन में उत्सुकता होने लगी कि क्या क्या मिलने वाला है।
1: काफी कुछ मिलने वाला है। अगर आप गुडी बैग को ही देखें तो उसमें सेखो साहब की फोटो है। सबसे बड़ी तो आप मनमोहक हो जाएंगे उस गुडी बैग को देख के। गुडी बैग के अंदर हमारा एक एयरक्राफ्ट का मॉडल है, एक जो हम अपने ओवरऑल्स पे एक सेखो का पैच, जो नॉर्मली जैकेट से है उस पर एक पैच लगाते हैं, पैच है उसके अंदर अवेलेबल। एनर्जी बार है उसके अंदर, एक रिस्ट बैंड है जब भी आप भागेंगे और आपको पसीने आएंगे उसको सुखाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी टी शर्ट। इस बार

0: रिबॉक के साथ कोलेब्रेशन किया है और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है जो आपको रनिंग का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी।
1: बहुत खूब। एक बात कहूँ, आप गुडी बैग नहीं दे रहे हैं, आप सपने दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ मैं उसी दौर में फिर पहुंच जाऊं जब मैं फिर एफओस का एग्जामिनेशन देने के लिए खुद को तैयार करूं। तो सपने दे रहे हैं यहाँ पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, आप जरूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कह रही हूँ, सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026, और उम्मीद की लौ कायम रखिए, थर्ड एडिशन आपके लिए और भी शानदार होगा। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो
0: तो
1: एक
0: किसी का,
1: सब
0: ये आप सर ने सही बोला, सपने देखेंगे जब भी तो पूरे होंगे।
1: बिल्कुल, लेकिन अगर कोई सपने दे दे अपने हाथों से तो उससे बड़ी बात दुनिया में शायद कुछ और हो नहीं सकती। एक सवाल हमारे पास और है। अक्सर हम जब कहीं जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा बैगेज होता है। अब हम सोचते हैं खासतौर पर जब मैराथन में जब हम दौड़ेंगे भागेंगे तो उस वक्त हमारे सामान का क्या होगा, तो इसके लिए क्या फैसिलिटी है?
0: इसके लिए फैसिलिटी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है। जब जैसे आप एंट्री करेंगे, हमने बहुत बड़े बैगेज काउंटर्स बनाए हुए हैं जहां आप अपना बैगेज सुरक्षित डिपॉजिट कर सकते हैं और जब आपकी रेस खत्म होती है वहां से वापस ले सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल निश्चिंत तो होकर जाइए, आपकी सुरक्षा, आपके सामान की सुरक्षा भारतीय वायुसेना करने वाला है इस मैराथन में। अब अक्सर ना हमारे साथ क्या होता है, टिकट मिला है, टिकट लिया है मैंने, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, दोस्त तुम चले जाओ। अक्सर हमारे साथ ये होता है। तो क्या इस मैराथन में कोई पार्टिसिपेंट ऐसा कर सकता है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो अब मेरे घर का परिजन, मेरा दोस्त चला जाए?
0: काश ऐसा हो पाता, बड़े नॉन ट्रांसफरेबल है।
1: जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपका पूरा वेरिफिकेशन देगा, पूरा आपका ब्यौरा देगा
0: बिल्कुल
1: कि आप वही हैं जो अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इस बात को आप जहन में बिठा लीजिए जनाब कि आपको पूरी एहतियात के साथ यहाँ पर पहुंचना है। यहाँ पर मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी और उसके बाद आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछना चाहेंगे। आज मैंने इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप नंबर का जिक्र नहीं किया, उसके बावजूद बहुत से संदेश यहाँ तक हमें मिले हैं और वंदे मातरम लिखा है हमारे पास। सरवाड़ से संदीप आया है, अरकेड़ी पंडित चन्नप्पा का संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें द्वारका सेक्टर 15 से शंकर का संदेश है। वंदे मातरम में यश शिंदे मुंबई से इन्होंने लिख भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। आपके संदेश तफसील से मैं कमांडर साहब को, विंग कमांडर साहब को सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ समय की नजाकत है, सिर्फ नाम पढ़ पाऊंगी। पंकज अमरावती संदेश भेजा है। यशवंत आडमुटे इन्होंने संदेश भेजा है महाराष्ट्र से, बीकानेर से हमारे पास संदेश आया है। मंसूर अली का दमदार संदेश टू सोल्जर्स इन्होंने लिख भेजा है वंदे मातरम। तमिलनाडु से हमारे पास आया है ये संदेश, नाम नहीं लिखा, विजय कुमार वी इन्होंने संदेश नाम भेजा है। और चंपावत टनकपुर उत्तराखंड से संदेश आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अनिल कुमार का हमारे पास संदेश है। आज समय कम है लेकिन संदेशों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अब यहाँ पर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी, स्पिरिट ऑफ सिखों क्या है ये हमें बताएं।
0: ये एक हमने पहल करी है इस एडिशन से। हमने देखा कि मैराथन्स में काफ़ी लोग होते हैं जो किसी इश्यूज के वजह डिप्राइड होते हैं, किसी किसी अंग में कोई डिफेक्ट होता है या अदरवाइज कोई एक्सीडेंटल इश्यूज हो जाते हैं, या कुछ लेडीज होती हैं जो ओल्ड एज होती हैं वो साड़ी वगैरह पहन के भागती हैं, कुछ कॉस्ट्यूम्स इस तरह की होती हैं। तो ये शो करता है कि हाँ, ये दीज आर डेडिकेटेड। जैसे सेखों साहब का स्पिरिट था इतना हाई इंडिया के लिए, ऐसा ही इन लोगों के लिए यूनिकनेस है कि इनका स्पिरिट इतना हाई है कि इतने चैलेंजेस के बाद भी उनको वो एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और वो इस रेस में भाग रहे हैं। तो हमारी वहाँ टीम रहेगी जो असेस करेगी ऐसे हमारे धावकों का और उनको हम फेलिसिटेट करेंगे रेस के बाद।
1: बहुत खूब। एक बात और, महिलाएं और पुरुष दोनों की तादाद आप अगर कंपैरिजन, तो खैर सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर बात की जाए जितना बढ़ चढ़कर पुरुष हिस्सा लेते हैं, महिलाएं भी आपने फर्स्ट एडिशन में देखा होगा, तो महिलाओं का भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया रहती है।
0: काफ़ी योगदान रहता है, मैं कहूँगा बराबर तो नहीं, मगर 60-40 की रेशो तो 100% रहती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो अगली बार मैं भी हूँ इसीलिए यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवा रही हूँ, खासतौर पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी को। अब एक बार दोबारा से उन सभी स्टेशन का नाम ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की ना अपने राज्य से, अपने जहाँ पे भी एयरफोर्स स्टेशन है, एक आत्मीयता जुड़ी होती है और लगता है अच्छा हमारे शहर में, हमारे जो शहर का जो एयरफोर्स स्टेशन है राज्य का, यहाँ पर भी है, उनका नाम ले लीजिए।
0: तो जैसा मैंने पिछली बार नॉर्थ टू साउथ गया था, अब मैं सोचता हूँ रिवर्स एक्शन करते हैं, अब
1: जी
0: साउथ टू नॉर्थ चलते हैं।
1: जी
0: तो अगर साउथ इंडिया में जाए तो तिरुवनंतपुरम पहला स्टेशन है, बेंगलुरु

0: दूसरा स्टेशन है, उसके बाद और ऊपर सेंटर में आए तो ग्वालियर है, ईस्ट में जाए तो गुवाहाटी है, वेस्ट में मुंबई और जोधपुर है, और नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़।
1: वाह, तो आप कहीं से भी हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इसका हिस्सा बनिएगा। हम जानते हैं आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, 15 सितंबर को रजिस्ट्रेशन समाप्त तो हो गए थे, लेकिन जैसे कि हम बहुत उम्मीदवार हैं, ऊर्जावान हैं, और हमारी ऊर्जा हमें अगले साल की ओर भी रुख कर रही है, लेकिन अगले साल के लिए आपको जानकारी तो फिर भी चाहिए होगी, तो हम धनखड़ साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि साइट का नाम दोबारा बता दें, जिससे कि हमारे वो श्रोता जो इस बार न सही अगली बार हिस्सा बन पाए इस मैराथन का।
0: अगर आप गूगल पे डालेंगे secho-marathon.in, ये साइट का नाम है, आप एक बार इसको देख लें। मैं अर्ज करूंगा जो नहीं भी पार्टिसिपेट कर पाए फिर भी इस साइट को एक बार विजिट कर लें, फ्यूचर में भी यही साइट रहने वाली है, हम इसी पे अपने नेक्स्ट एडिशन कंटिन्यू करेंगे।
1: बहुत खूब, हम दिल से एक बार फिर धन्यवाद देना चाहते हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी का, और हम यही चाहते हैं कि हर मर्तबा हम आपके साथ यूं ही हर शो में शामिल हों, आपसे बात करें, और सेकंड एडिशन ऑफ सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026 सफल हो, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने हमेशा जीतना सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
0: धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, एंड ऑल द बेस्ट।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: మీరింతవరకు చిత్రగీతాలు విన్నారు. మీరు వింటున్నారు 102.2 మెగాహెడ్స్ పై ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం. ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 అప్డేట్స్ వింటారు.
1: और अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइव अपडेट दैट वी ब्रिंग टू यू एट दिस आवर. घड़ी में बज रहे दोस्तों 5:30. हम लेकर आ गए हैं आपके लिए द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ हैं यहां पर धर्मेंद्र. सबसे पहले खुशखबरी के साथ इस अपडेट की शुरुआत करते हैं कि स्क्वॉश में इंडिया हैज क्लेम्ड द ब्रॉन्ज मेडल. यस, यू हर्ड मी राइट ओवर देयर. द इंडियन टीम हैज क्लेम्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द स्क्वॉश इवेंट. हमने देखा कि वी सेंथिल कुमार लॉस्ट 1-4 टू अमीशन राज चंद्रन इन द डिसाइडिंग match of the men's team semi-final between India and Malaysia. V. Senthil Kumar won the opening game 12-10, but Malaysia's Amishan Raj hit back to take the next three games 11-6, 11-8, 11-9. Earlier in the day, in the same event, we saw in the earlier matches that Malaysia took the early lead, jahan India lost the opening match of the men's team semi-final with Abhay Singh going down 0-3 to Ian Yo Ng. The Malaysian won all three games 11-8, 11-8, 11-8 in just 27 minutes, giving Malaysia an early 1-0 lead. Then we saw Veer Chautrani helping India make a recovery back into the second match, thereby levelling the scores 1-1, because Veer Chautrani beat Sanjay Jiwa 3-0. And finally, we saw that V. Senthil Kumar went down to lose the game, and as a result, India had to settle in with the bronze.
4: उधर कुश्ती से भी अच्छी खबर है. भारत के नितेश

0: वाच ने पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया है। उन्हें फाइनल में जापान के यूरी नाकाजातो ने फाइनल में 4-0 से हराया और गोल्ड अपने नाम किया। नाकाजातो ने मुकाबले में 4-0 की बढ़त बनाई। नितेश ने पिन से बचाव किया लेकिन जापानी पहलवान ने उन्हें वापसी का मौका नहीं दिया। नाकाजातो ने मैच की रफ्तार अपने नियंत्रण में रखी और गोल्ड जीता और इस सिल्वर के साथ भारतीय कुश्ती दल ने अपने अभियान की शुरुआत पदकों के साथ कर दी है। लेकिन ग्रीको रोमन रेसलिंग में एशियन गेम्स गोल्ड के लिए भारत का इंतजार जारी रहा। हम आपको बताएं कि 64 साल बाद कोई भारतीय पहलवान फाइनल में पहुंचा था और 1962 में मालवा सिंह और गणपत अंदालकर ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। लेकिन उधर अहलावत की बात करें तो वो महिलाओं की 62 किलोग्राम भार वर्ग में पदक से चूक गए। रेपेचाज में मानसी अहलावत का मुकाबला मंगोलिया के पहलवान से था। आते ही जब मैट पर वो आई 2-0 से पिछड़ गई लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी की, 2-2 की बराबरी भी की लेकिन अंतिम कुछ सेकेंड्स में अपने नियंत्रण में इस मुकाबले को नहीं रख सकी और 2 अंक गवाए, जिसकी वजह से उनको ये मुकाबला मानसी अहलावत को 2-4 से गंवाना पड़ा।
1: Right, in the world of golf, India's Pranavi Urs was in the second place in the women's individual stroke play after 2 rounds, carding 11 under 129 to set 2 strokes behind leader Shannon Juan Yin Tan of Singapore. Vahe Deeksha Dagar was tied 21st at 4 over 144 while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are presently third in the team standings behind China and Singapore.
0: और उधर हॉकी में भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन गेम्स मेंस हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई। गोल्ड मेडल के लिए 3 अक्टूबर को भारत का सामना कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा। भारत ने मैच के 23वें मिनट तक 3-0 की बढ़त बना ली थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अगले 26 मिनट में 3 गोल कर मैच 3-3 से बराबर कर दिया। 59 मिनट तक मैच बराबरी पर था। फाइनल हुटर बजने से करीब 50 सेकंड पहले अभिषेक ने फील्ड गोल कर भारत को जीत दिला दी और भारत के लिए गोल किया हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर। फिर उन्होंने ही 13वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर दूसरा गोल किया। सुखजीत सिंह ने 23वें मिनट में गोल किया। अभिषेक ने 60वें मिनट में गोल किया। पाकिस्तान के लिए अबू महमूद ने 30वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। हन्नान शाहिद ने 45वें मिनट में गोल किया। वहीद राणा ने 49वें मिनट में गोल किया और इस तरह से ये मुकाबला भारत ने अपने नाम 4-3 से कर लिया।
1: जी, एंड अ क्विक अपडेट फ्रॉम रग्बी सेवन्स, वेयर इंडियन वुमेन्स रग्बी सेवन्स टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव, दुमुनी मर्दनी, संध्या राय, मामा नायक, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, गुरिया कुमारी, निर्मल्या राउत, संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगी टीम हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द 2026 एशियन गेम्स, सफरिंग 2 हैवी डिफीट्स इन पूल बी, पूल ई इन सम क्लासिफिकेशंस एट द पलोमा मिजूर रग्बी स्टेडियम। मैच 1 इंडिया एंड हांगकांग दैट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड हांगकांग, इंडिया फिनिश्ड एट 7 पॉइंट्स वाइल हांगकांग एट 33 पॉइंट्स, and then the match 2, India lost to China 5-43. A tough day for the Indian women's rugby sevens team.
0: और मेडल टैली पर भी एक निगाह अगर डालें तो भारत अभी भी 8वें स्थान पर है। 10 स्वर्ण पदक जीते हैं अभी तक, 22 रजत पदक और 32 कांस्य पदकों के साथ कुल 64 पदक जीतकर भारत इस समय मेडल टैली में 8वें स्थान पर है।
1: That is all that we had. इस अपडेट में आप सबके लिए फिलहाल के लिए साक्षी, मुझे साक्षी मांडवाल और धर्मेंद्र को दीजिए इजाजत। हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे दोस्तों शाम के 6:30 बजे विद द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. गुड बाय फॉर नाउ.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: మీరు వింటున్నారు 102.2 మెగాహెడ్స్ పై ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం. చిత్రగీతాలు వింటారు. కార్యక్రమంలో ముందుగా గంగోత్రి చిత్రానికి ఎస్పీ చరణ్ మాలవిక పాడిన పాట సాహిత్యం చంద్రబోస్.

0: మీరింతవరకు చిత్రగీతాలు విన్నారు. మీరు వింటున్నారు 102.2 MHz పై ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం. సమయం 6 గంటలు కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే విశాల్ శర్మ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है. नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है.
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है. श्री मोदी ने कहा कि 2047 तक का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा. सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है. भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है. उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है. स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार

0: करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 पर दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 32 कांस्य पदकों के साथ 65 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. The Prime Minister was addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today. He said today, 21st century India is moving forward with a new work culture and its core principle is pro-people, proactive, good governance. He stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
2: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: Special Gram Sabhas will convene across the country tomorrow on the occasion of Gandhi Jayanti to discuss key rural governance reforms. The meetings will discuss transformative governance aimed at strengthening panchayats, improving public services and boosting the overall quality of life in rural India. Officials say these discussions will pave the way for transformative community-led development across villages nationwide. Rural Development Ministry said these special Gram Sabhas will also mark the launch of the People's Plan Campaign 2026-27, Sabki Yojana, Sabka Vikas, under which Gram Panchayat

0: महाविद्यालये 26-अधिक-2000तमवर्षस्य राष्ट्रिय ऐच्छिक रक्तदान दिवस आचरित। अस्मिन्नवसरे नीति आयोगस्य स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर एम श्रीनिवास ऐच्छिक रक्तदान शिबिरस्य उद्घाटनम् अकरोत्। नागरिक विमानयन मंत्री राममोहन नायडू अब्रवीत यत् देशः वैमानिकस्य कैप्टन स्मित मच्छारस्य असाधारण साहसेन उपस्थित बुद्ध्या च अतीव गौरवान्वितः अस्ति, येन विमानस्थ सर्वेषां यात्रिणां प्राणाः सुरक्षिताः। मंत्री प्रवरेण निगदितं यत् भारतीय वैमानिकाः स्वकीयेन कौशलेन अनुशासनेन निष्ठापूर्ण सुरक्षा प्रतिबद्धतया च जगति प्रतिष्ठां लब्धवन्तः। पाकिस्तानेन अफगानिस्तानस्य कुनार हेलमंद मण्डलयोः नागरिक गृहेषु कृत वैमानिक आक्रमणेषु स्त्री शिशून् समादाय न्यूनातिन्यूनं 10 अफगान नागरिकाः मृताः, 11 अन्ये च व्रणिताः। तालिबान प्रवक्त्रा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इत्यसौ अकथयत् यत् अस्मिन् आक्रमणे कुनार मण्डलस्य शुल्तान क्षेत्रे हेलमंद मण्डले त्रीणि भवनानि विनष्टानि। अस्य वैमानिक प्रहारस्य तीव्रं विगर्हणं कुर्वन् मुजाहिद इत्यसौ प्रत्यारोपितवान् यत् पाकिस्तान देशः स्वकीय राजनैतिक आर्थिक संकटेभ्यः जनध्यानम् अपसारयितुं अफगानिस्तान विरोधी नीतिं समाश्रयति। भारतीय नौसैन्यबलानां प्रमुखः पोतः आईएनएस तर्कशः स्वस्य यात्राक्रमे केन्या देशस्य मोम्बासा नगरस्य पोताश्रयं प्राप्नोत्। रक्षामन्त्रालयेन प्रोदीरितं यत् अयं प्रवासः ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्बन्धैः सम्बद्धयोः भारत केन्या समुद्र राष्ट्रयोः प्रगाढ़ सम्बन्धान् दृढ़यति। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय पेंशन प्रणाली दिवसस्य प्रसंगे आभासीय माध्यमेन भाषमाणः मुख्य आर्थिक उपदेष्टा वी अनंत नागेश्वरन समावोचत् यत् कौटुंबिक संचयानां विशालः अंशः दीर्घकालिक पेंशन योजनासु विनियोक्तुं नागरिक प्रोत्साहनं शासनस्य महती आवश्यकता वर्तते। जापानस्य काकामिगाहारा नगरे आयोजितायां एशियाई क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलेन चिरप्रतिद्वन्द्विनं पाकिस्तान देशं 4-3 इति चक्रैः पराभूय अन्तिमस्पर्धायां प्रवेशो लब्धः। इति वार्ताः।
1: మీరు వింటున్నారు 102.2 మెగాహెర్ట్స్ పై ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం. ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 అప్డేట్స్ వింటారు.
2: తాజా అప్డేట్స్ కా
3: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచీ నగోయా.
4: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूं साक्षी मांडवाल और दोस्तों मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद है धर्मेंद्र. हम लेकर आ गए हैं शाम के 6:30 बजे द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम जूडो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर देर इज मिक्स्ड न्यूज फॉर इंडिया इन जूडो विद यामिनी मौर्या लूजिंग हर वुमेन्स 57 kg क्वार्टर फाइनल टू मंगोलियाज अर्युन जिया थर्ड बिश बाय यूको. Yamini now moves into the repechage where she will face Japan's Mio Shirakane for a place in the bronze medal match. Meanwhile, Inanganbi Takalambam advanced to the women's 70 kg quarterfinals after beating Nepal's Poonam Shresht by Ippo. She will next take on North Korea's Moon Song Hui.
5: और हॉकी में भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन गेम्स मेंस हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है. अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई. गोल्ड मेडल के लिए 3 अक्टूबर को भारत का सामना कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा. और हम आपको बताएं कि भारत ने मैच के 23वें मिनट तक 3-0 की बढ़त बना ली थी. इसके बाद पाकिस्तान ने अगले 26 मिनट में 3 गोल कर मैच 3-3 से बराबर कर दिया. 59 मिनट तक मैच बराबरी पर था. फाइनल उटर बजने से करीब 50 सेकंड पहले अभिषेक ने फील्ड गोल कर भारत को जीत दिला दी. और अगर इस मुकाबले में गोल की बात करें तो भारत की तरफ से जो 4 गोल हुए उसमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से 2 गोल किए 5वें और 13वें मिनट में, सुखजीत सिंह ने 23वें मिनट में गोल किया और अभिषेक ने 60वें मिनट में गोल किया. पाकिस्तान के लिए अबू महमूद ने 30वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया, हन्नान शाहिद ने 45वें मिनट में गोल किया और वहीद राणा ने

0: 50वें मिनट में गोल किया।
1: Right, now let's move on to sailing, where India got a very good news at the start of the day today, where they secured their first sailing medal at the Asian Games with Manu Francis and Prince Kursinkal Noble winning the silver in the men's skiff event. The Indian pair finished second with 23 net points and 29 total points after 9 races, behind gold medalist China, who finished on 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold, while Hong Kong took the bronze medal.
0: और क्रिकेट में मेंस कैटेगरी के फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में आज श्रीलंका को आसानी से 124 रन के बड़े अंतर से हराकर गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाई। इस सेमीफाइनल मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए थे। भारत के लिए ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। पाकिस्तान ने उधर पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया और फाइनल के लिए टिकट कटाया।
1: जी, और अब गोल्फ की दुनिया से भी कुछ खबरें आपको लेकर देते हैं अपडेट्स के तौर पर। इंडियाज प्रणवी उर्स वाज इन द सेकंड प्लेस इन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले आफ्टर 2 राउंड्स, कार्डिंग 11 अंडर 129 टू सेट 2 स्ट्रोक्स बिहाइंड लीडर शैनन जुआन जिन टैन ऑफ सिंगापुर। दीक्षा डागर वाज टाइड 21st एट 4 ओवर 144, व्हाइल अदिति अशोक वाज टाइड 25th एट 5 ओवर 145। इंडिया वर थर्ड इन द टीम स्टैंडिंग्स बिहाइंड चाइना एंड सिंगापुर।
0: और अगर हम बात करें आगे कुछ और खेलों की, तो तीरंदाजी से भी भारत के लिए आज बेहद अच्छी खबर आई और भारत ने 4th मेडल जीता। कल के 3 गोल्ड के बाद आज गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के कंपाउंड इंडिविजुअल के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उन्होंने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 के स्कोर से हराया। यह एशियन गेम्स में 20 वर्षीय मणि का दूसरा मेडल है। उधर सेपकटेकरा के मेंस क्वाड्रेंट इवेंट में मेडल पक्का हो गया है। भारत ने आखिरी ग्रुप मैच में म्यांमार को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम इंडिया ने ग्रुप के 3 मैच जीते और अजेय रहते हुए ग्रुप में टॉप किया।
1: Right, moving on to Taekwondo, India's campaign in the women's individual Pomse event in Taekwondo ended as Rupa Bayer bowed out of the semi-final. She finished with 7.6100 points. This was not enough to finish among the 8 stars who qualified for the final. And finally, to sum up this latest update, we shall be also giving you the medal table and also telling all our listeners as to where is India presently standing on the medals table. So presently, the Indian team stands on the 8th spot with a total of 64 medals, which includes 10 gold, 22 silver and 32 bronze. On that note, फिलहाल के लिए वक्त हो गया है मुझे यानी साक्षी मांडवाल और धर्मेंद्र को इजाजत देने का। हम आपसे एक बार फिर से आज के दिन की आखिरी अपडेट लेकर मिलेंगे शाम के 7:30 बजे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।
2: एशियन गेम्स 2026। मీరు వింటున్నారు 102.2 మెగాహెర్ట్స్ పై ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం।

0: మీరింతవరకు చిత్రగీతాలు విన్నారు. మీరు వింటున్నారు 102.2 మెగాహెడ్స్ పై ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం. ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 అప్డేట్స్ వింటారు.
1: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచీ నగోయా. नमस्कार. 20वें एशियन गेम्स के 12वें दिन के खेल की अंतिम अपडेट के साथ मैं हूं धर्मेंद्र और मेरे साथ हैं साक्षी मंडवाल. आईची नागोया में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा. कोई गोल्ड आज टीम के हाथ नहीं लगा, हालांकि 5 मेडल जीतने में सफलता जरूर मिली. दिन का सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन कुश्ती की ग्रीको रोमन शैली में रहा, जहां नितेश सिवाच ने फाइनल में जगह बनाई. भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद ग्रीको रोमन कुश्ती के फाइनल में पहुंचा. हालांकि फाइनल में नितेश को जापान के यूरी नागा जातो ने 0-4 से हरा दिया और भारत का गोल्ड जीतने का इंतजार जारी रहा.
2: जी, और सेलिंग की दुनिया में अगर बात करें तो वहां से भी आज सुबह हमें खुशखबरी मिली, बिकॉज इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसनिकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेंस गिफ्ट इवेंट. द इंडियन पेयर फिनिश सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना, हु फिनिश्ड ऑन 16 नेट पॉइंट्स. हांगकांग टुक द थर्ड स्पॉट, देयर बाय रैपिंग अप विद द ब्रॉन्ज मेडल फॉर देमसेल्व्स.
1: और तीरंदाजी में जहां कल हमारी टीम ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, वहीं आज एक ब्रॉन्ज मेडल मिला. कंपाउंड मेंस इवेंट में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक मुकाबले में वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 के अंतर से हराया. ये एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है.
2: जी, स्क्वाश की दुनिया में भी आज भारतीय मेन को डेफिनेटली ब्रॉन्ज मेडल मिला. और अगर हम बात करें महिलाओं की तरफ भी, तो वहां पर भी द इंडियन वुमेन्स टीम वेंट डाउन 1-2 टू हांगकांग इन द वुमेन्स टीम सेमीफाइनल एंड हैड टू सेटल इन फॉर द ब्रॉन्ज. अगर मेन्स की बात करें तो वहां पर हमने देखा कि इन द फर्स्ट मैच इंडिया लॉस्ट द ओपनिंग मैच ऑफ द मेन्स टीम सेमीफाइनल विद अभय सिंह गोइंग डाउन 0-3 टू इयान यो एनजी. उसके बाद सेकंड गेम में वीर चौटरानी बीट संजय जीवा 3-0 टू ब्रिंग इंडिया लेवल 1-1. एंड फाइनली वी सेंथिल कुमार लॉस्ट 1-4 टू अमीशन राज चंदरन इन द डिसाइडिंग मैच ऑफ द मेन्स टीम सेमीफाइनल. एंड देयर बाय इंडियन मेन्स टीम इन स्क्वाश हैड टू ऑल्सो सेटल विद ब्रॉन्ज एंड द वुमेन्स स्क्वाश टीम ऑफ कोर्स सेटल्ड इन विद द ब्रॉन्ज एट द अर्ली पार्ट ऑफ द डे.
1: उधर हॉकी में भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन गेम्स मेंस हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है. अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई. गोल्ड मेडल के लिए 3 अक्टूबर को भारत का सामना मलेशिया से होगा. और हम आपको बताएं कि भारत ने मैच के 23वें मिनट तक 3-0 की बढ़त बना ली थी. उसके बाद पाकिस्तान ने जोरदार वापसी की और अगले 26 मिनट में 3 गोल कर मैच 3-3 से बराबर कर दिया. 59 मिनट तक मैच बराबरी पर था. फाइनल हुटर बजने से करीब 50 सेकंड पहले अभिषेक ने फील्ड गोल कर भारत को जीत दिला दी. और पुरुष हॉकी में अगर हम बात करते हैं तो भारत ने एशियन गेम्स में 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अब तक जीते हैं.
2: Right. And in cricket also, we have some good news to give you, where India, Indian men's cricket team defeated Sri Lanka today in the semi-final by a huge margin of 124 runs. India, having been put into bat first, posted a total of 169 for the loss of 7 wickets and 20 overs, whereas Sri Lanka, in that chase of making 170, got bundled out for a paltry 45 runs. Now, the Indian men's team will be up for the final clash against Pakistan, who defeated Bangladesh also in the semi-finals today and then moved on towards the finals. ये फाइनल का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को आपको देखने को मिलेगा.
1: और सेपक ठकरा के मेंस क्वाड्रेंट इवेंट में मेडल भारत के लिए पक्का हो गया. भारत ने आखिरी ग्रुप मैच में म्यांमार को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. और टीम इंडिया ने ग्रुप के 3 मैच जीते और अजेय रहते हुए ग्रुप में टॉप किया.
2: जी, वहीं ताइक्वांडो की दुनिया से अगर आपको कुछ खबर दे तो वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी खबर हम आपको नहीं दे पाएंगे, बिकॉज भारत का सफर इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पॉम्जे इवेंट इन ताइक्वांडो एंडेड टुडे एज रूपा बेओर बोड आउट ऑफ द सेमीफाइनल. शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स. दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल.
1: और शूटिंग से भी अच्छी खबर नहीं है. मेन्स 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल में भारत के अनीश भानवाला 7वें स्थान पर रहे. इसके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान खत्म हो गया है. अनीश ने एक और सीरीज में 5 में से 4 हिट किए. उनके कुल 15 शॉट में से 11 हिट रहे. इस स्कोर के साथ वे तीसरे स्थान के लिए बराबरी पर थे। हालांकि टाई होने पर क्वालिफिकेशन का स्कोर देखा गया, क्वालिफिकेशन में अनीश का स्कोर कम होने के कारण वे टाई ब्रेकर में पीछे रह गया और सातवें स्थान पर रहे। इसके साथ 3 गोल्ड 8 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 15 पदक जीतकर भारत का शूटिंग अभियान खत्म हो गया। भारत ने पिछले एशियन गेम्स के मुकाबले 4 स्वर्ण समेत 7 कम पदक जीते।
2: Right, in rugby sevens, the Indian women's rugby sevens team had a tough start on the opening day of the Aichi Nagoya 2026 Asian Games, suffering 2 heavy defeats in Pool B, Pool E in some classifications at the Paloma Mizua Rugby Stadium. The first match, India lost to Hong Kong, China 7-33, and the second match, India lost to People's Republic of China 5-43.
1: जी हाँ, और वॉलीबॉल में भी अच्छी खबर नहीं रही। पाकिस्तान के हाथों भारत को 3-0 से शिकस्त मिली और भारत का अभियान वॉलीबॉल में भी समाप्त हो गया है।
2: राइट, विद दिस टू क्विकली सम अप हाउ इंडिया स्टैंड्स इन द मेडल टेबल टुडे बाय द एंड ऑफ द डे। वेल, इंडिया इज स्टैंडिंग प्रेजेंटली ऑन द 8th स्पॉट विद अ टोटल ऑफ 64 मेडल्स व्हिच इंक्लूड्स 10 गोल्ड 22 सिल्वर एंड 32 ब्रॉन्ज। लेट्स ऑल्सो टेल यू दैट ऑन द नंबर 1 स्पॉट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विद अ टोटल ऑफ 288 मेडल्स व्हिच इंक्लूड्स 154 गोल्ड medals. Japan is a number 2 with a total of 217 medals with a total of 59 gold medals in that. And on the 3rd spot we have Republic of Korea with a total of 113 medals jisme se 30 gold medal hain. Aur Bharat ka sthan abhi medal table par hai 8th sthan par. Iske sath hi dosto filhal ke liye Dharmendra aur mujhe Sakshi Mandwal ko aaj ke liye dijiye ijazat. Hum aapse kal subah ek baar fir 9:30 baje judenge with all the updates of the ongoing Asian Games 2026. For the moment, it's goodbye and
1: namaskar,
2: good night.
1: Namaskar.
0: మీరు వింటున్నారు 102.2 మెగాహెడ్స్ పై ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం. చిత్రగీతాలు వింటారు. కార్యక్రమంలో ముందుగా నా ఆటోగ్రాఫ్ ఈ చిత్రానికి సందీప్ భౌమిక్, గంగా, ఎంఎం కీరవాణి పాడిన పాట, సాహిత్యం చంద్రబోస్.

0: దేశభక్తి గీతం విన్నారు. ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం, సమయం 8:45 వస్తుంది. వార్తా ప్రసారం వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ సంధ్యా కే సాథ్ మే విశాల్ శర్మ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया. गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की. बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर. अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए. और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते. भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है. नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है.
2: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है.
2: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है. 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है. 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है. 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है.
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए।

0: हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
3: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
4: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
5: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
6: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
5: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड।
1: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
7: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत

0: ये आकाशवाणी है। प्रादेशिक लोक संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है बांग्ला संगीत के अंतर्गत नजरुल गीति। कलाकार हैं श्रीमती तुली रेखा दत्तो। श्रीमती तुली रेखा दत्तो 3 दशकों से भारतीय संगीत के प्रति समर्पित हैं। आप एक ख्याति प्राप्त गायिका हैं जिन्होंने नजरुल गीति, भजन, उपशास्त्रीय संगीत तथा शास्त्रीय संगीत जैसी विधाओं में अपना परचम लहराया है। आप अपनी भावात्मक कलाकारी और शास्त्रीय अनुशासन दोनों के लिए जानी जाती हैं। श्रीमती तुली रेखा दत्तो के संगीत का सफर हमारी बहुमूल्य गुरु शिष्य परंपरा का परिचायक है। पंडित एटी कानन, उस्ताद मोहम्मद दिलशाद खान, पंडित दीनानाथ मिश्रा, पंडित बलराम पिल्लई, विदुषी शुभ्रा गुहो, श्रीमती मीरा बंदोपाध्याय, श्री सुकुमार मित्रा और विदुषी डालिया राहुत समेत देश के सुविख्यात संगीतज्ञों से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन की एक रीढ़ की कलाकार श्रीमती तुली रेखा दत्तो ने अपने श्रोताओं के समक्ष मनमोहक प्रस्तुतियां दी हैं। संगीत समारोह, मीडिया प्रसारण और व्याख्यानों के माध्यम से देश विदेश में आपने अनगिनत कार्यक्रम पेश किए हैं।
1: Tonight in the national program of regional light and folk music, we present light music in Bengali through the rendition of Nojrul Giti by Srimati Tuli Rekha Datta, a distinguished vocalist with over 3 decades of dedicated service towards Indian music. Srimati Tuli Rekha Datta has established herself as a much sought after performer in Nojrul Giti, bhajan, semi classical music as well as classical music. She is renowned for her expressive artistry and classical discipline. The musical journey of Srimati Tuli Rekha Datta reflects the rich Guru Shishya Parampara, nurtured under some of the India's most eminent maestros, namely Pandit A.T. Kanan, Ustad Muhammad Dilshad Khan, Pandit Dinanath Mishra, Pandit Balaram Pillai, Vidushi Shubhra Guha, Srimati Meera Bandopadhyay, Sri Shukumar Mitra, and Vidushi Dalia Rahut. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Srimati Tuli Rekha Datta has enthralled her audience through concerts, broadcasts, lecture demonstrations, and national as well as international performances.
0: आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप एक अति प्रचलित नजरुल गीति के साथ करेंगी जिसके रचयिता स्वयं काजी नजरुल इस्लाम हैं। वो विद्रोही कवि जो आज भी हर बंगालवासी के हृदय का गौरव हैं। गीत के बोल हैं महाविद्या आद्यशक्ति परमेश्वरी कालिका, जिसका अर्थ है सभी दैवी स्त्री ऊर्जाओं का एक परम मातृ शक्ति में समावेश है तथा संसार की समस्त सृष्टियां ज्ञान, शक्ति, प्रेम और मुक्ति उसी शाश्वत दिव्य माता से वाहित होती हैं।
1: श्रीमती तुली रेखा दत्ता बिगेन्स हर प्रेजेंटेशन टुनाइट विद अ वेरी पॉपुलर नजरुल गीति पेंड बाय नन अदर देन द रिवर्ड कवि नजरुल इस्लाम, द पेट्रियट पोएट who holds a place of pride in every Bengali's heart. The song goes as Mohabidya Adya Shakti, meaning the unity of all divine feminine manifestations in one supreme mother, affirming that all creations, knowledge, strength, compassion and liberation flows from the eternal divine mother.

0: नजरुल गीति के अपने गुलदस्ते से श्रीमती तुली रेखा दत्त अब प्रस्तुत करेंगी गीत आधो आधो बोल लाजे बाधो बाधो बोल, जो कि अनकहे प्रेम की सुंदरता की बात करता है, जहां शब्दों से अधिक मौन की भाषा कह जाती है।
1: The next presentation from Srimati Tuli Rekha Datta from her basket of Nozrul Giti is Adho Adho Bol, which celebrates beauty of unexpressed love, where silence often conveys more than words.

श्रीमती तुलीरेखा दत्त की अगली प्रस्तुति नजरुल गीति हेमंतिका एशो एशो हिमेल शीतल बनोतले। हमें प्रकृति की शांत मनोहारी

0: और विपुल सुंदरता से मिलवाती है। कवि नजरुल इस्लाम इस गीत में प्रकृति को अंतर की शांति और आध्यात्मिक जागृति का स्रोत कहते हैं।
1: श्रीमती तूली रेखा दत्ता नेक्स्ट नोजुल गीति हेमंतिका एशो एशो विच ग्रीट्स अस विद ट्रैंक्विलिटी अबंडेंस एंड ग्रेसफुल ब्यूटी ऑफ द ऑटम सीजन एंड वेयर कवि नजरुल इस्लाम प्रेजेंट्स नेचर एज अ सोर्स ऑफ इनर पीस एंड स्पिरिचुअल

0: नजरुल गीति की इस सुंदर प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती तुली रेखा दत्तो अब प्रस्तुत करेंगी बोउ कथा कओ अभिमानिनी, जो कि प्रेम में आपसी बातचीत और मान मनोवल की बात करता है। इस गीत के माध्यम से कवि कहते हैं कि रिश्तों को संवारने के लिए अभिमान छोड़ आपसी समझबूझ और वार्तालाप की राह अपनानी चाहिए।
1: Continuing with her lovely rendition of Nozrul Giti, Srimati Tuli Rekha Datta now presents Bou Katha Kao Obhimanini, a song that depicts the power of love, communication and reconciliation. It emphasizes that relationships flourish when pride gives way to understanding and heartfelt conversation.

0: श्रीमती तुलीरेखा दत्त नजरुल गीत के इस कार्यक्रम का समापन झूम झूम झूमरा के साथ करेंगी, जो संगीत, नृत्य और जीवन छंद के प्रति हमारे अनायास प्रेम का बखान करता है। ये गीत कहता है कि नृत्य हर्षोल्लास की एक सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है, जो लोगों को प्रकृति और ईश्वर से जोड़ता है।
1: Srimati Tuli Rekha Datta concludes her presentation of Nojrul Giti tonight with Jhoom Jhoom Jhoomra Nache Ke Elo, which depicts our spontaneous love for music, dance and the joyful rhythm of life. It portrays dance as a universal expression of happiness that unites people with nature and the divine.

0: अभी आप बंगाल से प्रेम की भेंट स्वरूप नजरुल गीति सुन रहे थे। कलाकार थी श्रीमती तुली रेखा दत्तो। इसी के साथ नजरुल गीति की यह प्रस्तुति यहीं संपन्न होती है। कृपया अगली घोषणा हेतु हमारे साथ बनी रहें।
1: यू आर लिसनिंग टू अ बुके ऑफ नजरुल गीति कैरिंग लव फ्रॉम द लैंड ऑफ बंगाल एंड एज प्रेजेंटेड बाय श्रीमती तुली रेखा दत्ता। And with this, we end tonight's presentation of Nojrul Gheeti.

0: which was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata. Please stand by for the next announcement.
1: ये आकाशवाणी है। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बिहार की समृद्ध लोक संगीत परंपरा की एक मनभावन प्रस्तुति। बिहार की लोक परंपरा में जीवन के सुख दुख, प्रेम और विरह, भक्ति, पारिवारिक संबंध तथा सामाजिक सरोकार, इन सभी भावों की सहज और आत्मीय अभिव्यक्ति लोकगीतों के माध्यम से होती रही है। आज की प्रस्तुति की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना कुमारी। वंदना कुमारी आकाशवाणी की बी हाई ग्रेड कलाकार हैं। उन्होंने लोक गीत गायन की शिक्षा भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना से प्राप्त की। वहीं उन्होंने अपने गुरु मनोरंजन ओझा से लोक गायन की बारीकियों के साथ साथ लोक परंपराओं की गहन जानकारी प्राप्त की।
2: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू आवर रीजनल ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ फोक एंड लाइट म्यूजिक। टुडे वी ब्रिंग यू द रिच एंड कलरफुल फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ बिहार, अ ट्रेडिशन that has lived through generations and continues to connect people with their roots. Bihar folk songs beautifully reflect the many shades of life, joy and sorrow, love and longing, devotion, family relationships and everyday social life. Our featured artist today is the well-known Bhojpuri folk singer, Vandana Kumari. Vandana Kumari is a B high grade artist of All India Radio. She received her training in folk singing at the Bharatiya Nritya Kala Mandir, Patna, where she learned the finer nuances of folk music and the traditions associated with it from her guru, Manoranjan Ojha.
1: आज की प्रस्तुति की शुरुआत वंदना कुमारी कर रही हैं एक पारंपरिक देवी गीत से। देवी गीतों की बिहार की लोक परंपरा में अपनी विशिष्ट पहचान है। इसका एक लोकप्रिय रूप है पचरा, जिसमें देवी की महिमा, लोक विश्वास और भक्ति भावना का सुंदर समावेश दिखाई देता है। प्रस्तुत गीत में शीतला माता और मल्लाह के बीच संवाद के माध्यम से भक्ति और लोक आस्था को अभिव्यक्ति दी गई है। तो आइए सुनते हैं वंदना कुमारी के स्वर में यह पारंपरिक देवी गीत, जिसके बोल हैं यही पार शीतला मैया।
2: आवर फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज अ ट्रेडिशनल देवी गीत और अ डिवोशनल सॉन्ग डेडिकेटेड टू द गॉडेस। Devi Geet occupies a special place in Bihar's folk tradition. One of its popular form is known as Pachra, which brings together devotion, folk belief and the glory of the goddess. In today's song, we hear a dialogue between Sheetala Mata and a boatman, woven into a beautiful expression of faith and devotion. So, let us listen to Vandana Kumari in this traditional Devi Geet titled, Yehi Paar Sheetala Maiya.

0: अब प्रस्तुत है शिव भजन, जिसके बोल हैं एहो शिव शंकर दानी। इस भजन में भक्त भगवान शिव से मंगल की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। भारतीय लोक और धार्मिक संगीत परंपरा में मंगल कामना का विशेष महत्व रहा है। ईश्वर का स्मरण और मंगल की प्रार्थना किसी शुभ अवसर पर प्रस्तुति के आरंभ का अभिन्न हिस्सा रही है।
1: एंड नाउ अ शिव भजन। द सॉन्ग इज टाइटल एहो शिव शंकर दानी। इट इज अ प्रेयर टू लॉर्ड शिवा, सीकिंग हिज ब्लेसिंग एंड विशिंग for peace and well-being. In our folk and devotional traditions, remembering the divine and seeking blessings has always been an important part of any auspicious occasion. So let us listen.

0: अब अगली प्रस्तुति है झूमर। प्रस्तुत झूमर में नायिका अपने पति से विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मांग करती है। गीत में दाम्पत्य जीवन की आत्मीयता और सहज हास परिहास का सुंदर रंग दिखाई देता है। आइए सुनते हैं यह मनभावन झूमर, जिसके बोल हैं कुसुम रंग चुनरी।
1: Our next presentation is a lively jhumar. In this song, a woman playfully asks her husband for beautiful clothes and ornaments. It is a charming glimpse of married life, filling with affection, warmth and a touch of humor. Here is the jhumar titled Kusum Rang Chuneri.

0: अब प्रस्तुत होने वाले लोक भजन में भरत और कैकेयी के संवाद के माध्यम से भगवान श्री राम के वन गमन से जुड़ी परिस्थितियों का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। इस संवाद में परिवार के भीतर उत्पन्न भावनाओं, पीड़ा और घटनाक्रम को लोक गायन की सहज शैली में अभिव्यक्त किया गया है। सुनते हैं यह लोक भजन जिसके बोल हैं राम कहां माई।
1: आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज अ फोक डिवोशनल सॉन्ग बेस्ड ऑन एन इमोशनल डायलॉग बिटवीन रिकॉलिंग द सर्कमस्टांसेस सरेंडिंग लॉर्ड राम Rama's exile through this simply yet powerful folk form. The song brings alive the emotions within the family, the pain, the conflict, and the sorrow of separation. Let us listen to this lok.

0: बच्चे के जन्म के छठे दिन मनाया जाने वाला छठी संस्कार परिवार के लिए खुशी और उल्लास का अवसर होता है। प्रस्तुत गीत में ननद और परिवार की अन्य महिलाएं बच्चे की माँ से विभिन्न प्रकार के आभूषण और वस्त्रों की मांग करती है। अब सुनते हैं ये छठी गीत जिसके बोल हैं छठिया पूजेला ननदी।
1: One such tradition is the chhati ceremony observed on the sixth day after the birth of a child. It is a time of happiness and celebration for the entire family. In this song, the sister-in-law and the other women of the family play.

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना कुमारी का गायन। संगत कलाकारों में नाल पर अर्जुन कुमार चौधरी, हारमोनियम पर अभिषेक पाठक और बांसुरी पर मोहम्मद सलीम। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन आकाशवाणी पटना केंद्र में किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द रीजनल ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ फोक एंड लाइट म्यूजिक फीचरिंग द रिनाउंड भोजपुरी फोक सिंगर वंदना कुमारी। द कंपेनियन म्यूजिशियन Where Arjun Kumar Chaudhary on Nal, Abhishek Pathak on Harmonium and Mohammad Saleem on Flute. The program was recorded at Akashwani Patna Center.

0: బస్తీ హజరత్ నిజాముద్దీన్.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है. नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है.
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है.
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है. वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए. नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा. सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है. भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है. उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में भी बदलाव किया है. सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है. केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है. ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे. पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था. सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा. पुदुचेरी जिला प्रशासन ने 6 अक्टूबर को होने वाले थट्टन चावड़ी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए 4 फ्लाइंग स्क्वाड और 1 विशेष निगरानी टीम 2400 घंटे तैनात की गई है. इसके अलावा 5 बाइक स्क्वाड और आबकारी विभाग की 3 टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं. उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार रविवार 4 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा. चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता चुनाव संबंधी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1950 या निर्वाचन आयोग के सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करा सकते हैं. संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है. इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी. फ्लाई दुबई की यह उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी. इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया. घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं. यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने दी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है. जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ टोटल 66 पदक जीत लिए. नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा महिला स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता. कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया. उधर पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: दिस इज आकाशवाणी.
0: The news read.

0: విజయవాడ కేంద్రం 20వ ఆసియా క్రీడలు 2026 రోజువారి ముఖ్యాంశాల సమాహార ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఇప్పుడు వింటారు.
1: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచి నగోయా.
2: बीसवें एशियाई खेलों में आज के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं हम. मैं हूं अनुपम पाठक, नमस्कार. सबसे पहले आज की सुर्खियां. नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन कुश्ती में इतिहास रचा, पाया रजत पदक. सेलिंग में फ्रांसिस मनु और प्रिंस नोबेल ने रजत पदक हासिल किया. कंपाउंड आर्चरी में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक पर निशाना साधा. स्क्वैश में महिला और पुरुष टीम दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक. और हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया. पहलवानी के मैट पर आज भारतीय लिहाज से एक अनोखी उपलब्धि आई. सोनीपत हरियाणा के लाल ने कमाल कर दिया. 1962 के बाद पहली बार कोई भारतीय ग्रीको रोमन स्पर्धा के इवेंट में फाइनल में पहुंचा. खुलासा शाहिद आजमी से.
3: भारतीय पहलवान नितेश कुमार ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीतकर 64 साल का इंतजार खत्म कर दिया. शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक पहुंचे नितेश भले ही स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन उनका रजत पदक भारत की कुश्ती के इतिहास में एक नया अध्याय लिख गया. पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमान बर्दी अगामेदेव को 7-1 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में मंगोलिया के गंगहुयाग गनबातार को 9-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई. फाइनल में उन्हें जापान के यूरी नकाजातो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रजत पदक जीतकर नितेश ने इतिहास रच दिया. वह 1962 के बाद ग्रीको रोमन वर्ग में एशियन गेम्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बने. हालांकि इससे पूर्व 2 और ग्रीको रोमन मैच खेले गए, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली. 60 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित को ईरान के अब्बासपुर रागानी के खिलाफ मुकाबला गंवाना पड़ा. वहीं 77 किलोग्राम में अमन ने शानदार शुरुआत करते हुए मंगोलिया के बोरगिल तोशिन बातार को 8-6 से हराया. हालांकि अगले मुकाबले में कतर के शाहीन बदाघी मुफराद ने अमन को 9-0 से शिकस्त दी. इसके साथ ही भारत का ग्रीको रोमन कुश्ती अभियान 2 पदकों के साथ समाप्त हो गया. वहीं महिला वर्ग में आज एकमात्र वजन वर्ग में भारतीय पहलवान मानसी अहलावत 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई. मानसी का कांस्य पदक मुकाबले में मंगोलिया के अल्तजिन तोकतोक से सामना हुआ. रोमांच से भरपूर इस मैच में मानसी ने आखिरी दम तक जोर लगाया, लेकिन 4-2 से हारकर कांस्य पदक से चूक गई. इससे पहले मानसी ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की इरीना कुज़निसोवा को 6-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जो सुबिन को विक्ट्री बाई फॉल से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. हालांकि सेमीफाइनल में जापान की नोनोका ओजाकी के खिलाफ मानसी को 0-6 से हार का सामना करना पड़ा. अब कल 2 अक्टूबर को पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में सुजीत कलकल और 125 किलोग्राम में रुहाल चुनौती पेश करेंगे. वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम में दीपांशी और 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक मैट पर उतरेंगी.
2: नौकायन के नाविक कई दिनों से समंदर की लहरें गिन रहे थे. आज कई स्पर्धाओं में उनकी नाव किनारे पर जा लगी. स्किफ में प्रिंस नोबेल और फ्रांसिस मनु की नाव तो चांदी से भर गई, और इस चांदी की पूरी कहानी साक्षी मंडवाल से.
4: इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल विनिंग सिल्वर इन द मेंस स्किफ इवेंट. द इंडियन पेयर फिनिश्ड सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold while Hong Kong took the bronze medal.
2: कंपाउंड आर्चरी में युवा होनहार गणेश रत्नम और चिकित्सा तानीपार्थी थे आर्चरी रेंज में, पदक एक ही आया. रिपोर्ट शाहिद आजमी से.
3: एशियन गेम्स के 12वें दिन तीरंदाजी में भारत के लिए एक पदक आया, तो एक मुकाबले में करीबी हार का सामना करना पड़ा. पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने कांस्य पदक अपने नाम किया. कांस्य पदक के मुकाबले में गणेश ने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149 के मुकाबले 144 अंकों से हराया. गणेश ने मुकाबले में घसब की सटीकता दिखाई और 15 13 में से 14 तीरों पर परफेक्ट 10 का स्कोर किया। ये एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है। इससे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम का हिस्सा रहे थे। उनके कांस्य पदक के साथ कंपाउंड तीरंदाजी में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य समेत 4 पदक जीते। वहीं महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चिकिता तनिपार्थी को इंडोनेशिया की नूरिसा दियान अश्फरिहान ने बेहद करीबी मुकाबले

0: 144 से 143 हराया। इसके साथ ही चिकित्सा का व्यक्तिगत कंपाउंड अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया।
1: स्क्वाश में टीम स्पर्धाओं में भारतीय टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई सेमीफाइनल तक पहुंच गईं और आज सेमीफाइनल में दोनों टीमों के रैकेट विपक्षी कौशल और दमखम को पार नहीं कर सके, लेकिन उनके हौसले और अभियान की दाद दीजिए जिसने दोनों को दिलाए कांस्य पदक। रिपोर्ट धर्मेंद्र से।
2: स्क्वाश में भारत को आज दो कांस्य पदक मिले। पुरुष टीम को मलेशिया के हाथों सेमीफाइनल में 1-2 की हार से ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। पहले मैच में अभय सिंह को एनजी इयान ने 0-3 से शिकस्त दी। स्कोर 8-11, 8-11, 8-11 रहा, लेकिन दूसरे मैच में वीर चोटरानी ने भारत को वापसी कराई। इस मैच को चोटरानी ने 3-0 से अपने नाम किया। उन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी संजय जीवा को 11-4, 11-8, 11-5 के स्कोर से शिकस्त दी, लेकिन वी सेंथिल कुमार निर्णायक मैच में पराजित हो गए। उन्हें ए चंद्रन ने 4 सेट में 12-10, 6-11, 8-11, 9-11 से हराया और भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। भारतीय महिला स्क्वाश टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत भारतीय महिला स्क्वाश टीम के लिए अच्छी नहीं रही। ये अलग बात है कि अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ अच्छी शुरुआत की और पहले दो गेम जीते। अनाहत ने पहला गेम 11-9 और दूसरा गेम 11-8 से अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद चान सिन ने शानदार वापसी की और उन्होंने अगले 3 गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। तीसरा गेम चान सिन ने 11-6 से जीता तो चौथे गेम को 13-11 और पांचवें गेम को 12-10 से जीता। इस जीत के साथ हांगकांग ने मैच में 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि इसके बाद तन्वी खन्ना ने भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। उन्होंने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी ली का यी को बेहतरीन वापसी करते हुए हराया। पहले गेम में तन्वी को 4-11 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अगले तीनों गेम जीतकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। तन्वी ने दूसरा गेम 13-11, तीसरा गेम 11-9 और फिर 13-11 से जीता। निर्णायक मुकाबले में जोशना चिनप्पा ने निराश किया और वह होजे लोक के खिलाफ हार गई। होजे ने पहला गेम 11-4 से अपने नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में भी हांगकांग की खिलाड़ी का दबदबा रहा और उन्होंने गेम को 11-7 से जीता। होजे तीसरे गेम में भी हावी नजर आई और उन्होंने 11-9 से जीतकर हांगकांग को फाइनल का टिकट दिलाया।
1: हॉकी में परंपरागत विपक्षी भारत और पाकिस्तान थे आमने सामने और क्या मैच हुआ, लोमहर्षक, सांसें थाम देने वाला। भारत ने करीब एक दशक से पाकिस्तान पर चली आ रही अपनी बादशाहत बनाए रखी, मैच 4-3 से जीत लिया। किसी बेहतरीन थ्रिलर की तरह था ये मैच। 3-3 की बराबरी, खेल समाप्त होने वाला था, सीटी बजने वाली थी, लग रहा था मामला शूट आउट में जा रहा है। तो हूटर बजने के ठीक 40 सेकंड पहले भारतीय हमला होता है, गेंद डी में पहुंचती है, पाकिस्तानी डिफेंडर के स्टिक से टकराकर फ्लेक्ट होती है और अभिषेक ने फुर्ती के साथ गेंद को गोल मुहाने के भीतर कर दिया। भारत फाइनल में पहुंच गया, लेकिन इस मैच के रंग कई बार बदले थे। पहले दोनों क्वार्टर्स भारत के नाम और अगले दोनों में भारतीय रक्षण की चूक और पाकिस्तान के पलटवार। पहले क्वार्टर में ही 5वें मिनट और फिर 13वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर हिट्स का जादू चलाया, भारत 2-0 से आगे। हाफ टाइम के बाद सुखबीर ने एक बेहतरीन फील्ड गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया। भला किसने सोचा था कि पाकिस्तान अभी भी मैच में वापस आ सकता है, लेकिन लगा भारतीय रक्षण की धार अचानक कुंद सी हो गई है। पहले पेनल्टी कॉर्नर में अल महमूद और फिर हनान शाहिद का फील्ड गोल और उसके बाद चौथे क्वार्टर में राणा वहीद का भी लेफ्ट फ्लैंक से मारा गया करारा शॉट जिससे गोलकीपर कोसों दूर थे। बहरहाल अभिषेक के गोल ने भारत की जीत पक्की कर दी। अब स्वर्ण पदक के लिए भारत मलेशिया से भिड़ेगा 3 तारीख को और कहने की जरूरत नहीं, हॉकी का स्वर्ण पदक और सभी पदकों से ज्यादा प्यारा होता है हमें। क्रिकेट में आखिरकार भारतीय टीम सचमुच मैदान में उतरी और शानदार मैच खेला। इस शानदार जीत की शानदार कहानी धर्मेंद्र से।
2: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने जापान के निशिन में खेले गए सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट भारत के लिए लिए। भारत ने श्रीलंका पर 2020 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। पिछली सबसे बड़ी जीत 93 रन की थी जो 2017 में कटक में मिली थी। अब शनिवार को गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये पहला मौका है जब ये दोनों टीमें एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले में आमने सामने होंगी। ईशान ने बताया कि भारतीय टीम फाइनल मैच के

0: ये तैयार है। ईशान किशन ने इस मैच के बारे में कहा,
1: आई थिंक जस्ट कीपिंग इट सिंपल, यू नो यू डोंट थिंक सो मच, वी प्लेड टुडे, वी नो द कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी सो इजी, स्पेशली दे आर आल्सो स्पिनिंग स्पिनर फ्रेंडली टीम, एट द सेम टाइम यू नो यू जस्ट डोंट थिंक लाइक व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर टू डेज, यू जस्ट कीप काम, यू प्ले योर शॉट्स, यू बी इन द मोमेंट एंड जस्ट एंजॉय दोस क्रंच मोमेंट्स।
2: सिपक टॉकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में अरुण और बॉबी कुमार के खेल ने उम्मीदें जगाए रखी। जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: इंडिया सिक्योर्ड अ मेडल इन मेंस क्वाड्रेंट सिपक टॉकरा आफ्टर बीटिंग म्यांमार 2-1 इन देयर फाइनल ग्रुप मैच। द विक्ट्री सेंट इंडिया इनटू द सेमीफाइनल्स एंड कीप्स देयर अनबीटन रन इंटैक्ट अक्रॉस 3 ग्रुप मैचेस। इंडिया फिनिश्ड टॉप ऑफ देयर ग्रुप एंड आर अश्योर्ड ऑफ अ प्लेस ऑन द पोडियम। अर्लियर इन द डे वी सॉ इंडिया डिफीट वियतनाम इन द मेंस क्वाड्रेंट ग्रुप ए मैच ऑफ द सिपक टॉकरा इवेंट। दे वन इन स्ट्रेट सेट्स बाय अ मार्जिन ऑफ 15-12, 15-7, thereby डिफीटिंग वियतनाम 2-0।
2: शूटिंग की स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई। अंतिम स्पर्धा भी कल से जारी पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश भानवाला फाइनल तक तो पहुंचे, लेकिन पदक पे निशाना नहीं साध पाए। आज की स्पर्धा पर शाहिद आजमी का विवरण।
4: एशियन गेम 2026 में शूटिंग स्पर्धा में आज भारत की आखिरी उम्मीद अनीश भानवाला का सफर 25 मीटर रैपिड पिस्टल के फाइनल में 7वें स्थान पर रहते हुए खत्म हुआ। क्वालिफिकेशन में अनीश ने 576 का स्कोर कर नवां स्थान हासिल किया। हालांकि एक देश से अधिकतम 2 निशानेबाजों को फाइनल में पहुंचने के नियम के तहत उन्हें फाइनल में जगह मिली। आपको बता दें दक्षिण कोरिया के 3 निशानेबाज क्वालिफाई हुए थे, लेकिन नियम के तहत उनके 2 निशानेबाज ही फाइनल में पहुंच सके। फाइनल में अनीश ने एक अहम दौर में 15 में से 11 सटीक निशाने लगाए, लेकिन टाई ब्रेकर में पीछे रह गए। इस तरह अनीश 7वें स्थान पर रहे और उनके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान समाप्त हो गया। अब एक नजर डालते हैं एशियन गेम 2026 में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर। भारतीय शूटरों ने एक बार फिर अपनी सटीक निशानेबाजी का दम दिखाया। हालांकि कुछ नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ओवरऑल भारत ने कुल 15 पदक अपने नाम किए, जिनमें 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही नीरू ढांडा का प्रदर्शन। उन्होंने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने के साथ ही कायनन चेनई के साथ मिक्स ट्रैप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और अगर पिछले एशियन गेम्स की तुलना करें तो हांगझाऊ 2022 एशियन गेम्स जो 2023 चीन में आयोजित हुए थे, वहां भारतीय निशानेबाजों ने 22 पदक जीते थे, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।
2: वॉलीबॉल में टीम दमखम तो पूरा लगाती है, लेकिन 1986 के बाद से पदक नहीं आ पा रहा। लेकिन आज क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को वो ब्लॉक नहीं कर पाए। विवरण धर्मेंद्र से।
0: वॉलीबॉल में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से 0-3 से हार गई। पाकिस्तान ने मुकाबला 25-19, 25-23, 25-18 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ये मैच 1 घंटे 20 मिनट तक चला। भारत को सबसे ज्यादा 10 अंक अंशवाल राय ने दिलाए। पाकिस्तान के मुराद खान ने 22 अंक बनाए। इस हार के साथ भारत का एशियन गेम्स में वॉलीबॉल अभियान खत्म हो गया।
2: जूडो में उम्मीदें यामिनी मौर्य से थी, लेकिन मन मोह लिया मणिपुर की एक लड़की ने। कांस्य पदक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। जूडो का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: In judo, Yamini Maurya's campaign ended with a defeat in the women's 57-kilogram repechage at the Asian Games. While India's Inanganbi Taklambam first beat Nepal's Poonam Shrestha by IPO to qualify for the quarterfinals. However, she lost by IPO to North Korea's Song Hui Moon in the quarterfinals. Song's reaching the final opened up the repechage route for Taklambam. The Indian was scheduled to face China's Jing Tang in the repechage round. However, the Chinese judoka was disqualified before the bout. Consequently, Taklambam was awarded a walkover victory via Fusen Gachi. India's Inanganbi Taklambam lost the bronze medal bout in the women's 70-kilogram event, getting defeated by Anujin Ulzi, who won the bout by Waza Ari.
2: इन एशियाई खेलों में टेनिस ने जरूर कई दिल तोड़ दिए। मायूस किया। 40 साल बाद टेनिस में भारतीय दल बिना पदक के रह गया। सुमित नांगल भी अपना मैच आज हार बैठे क्वार्टर फाइनल का। लेकिन गोल्फ की बात करें तो उसमें उम्मीदें जगी हुई हैं। कल आरंभ हुआ था, भारतीय टीम चुनौती देने की स्थिति में लग रही थी, और आज क्या हुआ इसका विवरण दे रही हैं साक्षी मंडवाल।
3: इंडियाज प्रणवी उर्स वाज इन द सेकंड प्लेस इन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले आफ्टर टू राउंड्स कार्डिंग 11 अंडर 129 टू सेट टू स्ट्रोक्स बिहाइंड लीडर शैनन जुआन जिन टैन ऑफ सिंगापुर। दीक्षा डागर वाज टाइड 21st एट 4 ओवर 144 व्हाइल अदिति अशोक वाज टाइड 25th एट 5 ओवर 145। इंडिया आर थर्ड इन द टीम स्टैंडिंग्स बिहाइंड चाइना एंड सिंगापुर।
2: साइकिलिंग ट्रैक में आज पुरुष ओमनियम, महिला स्प्रिंट और मेडिसिन की प्रतियोगिताएं थीं। ओमनियम में हर्षवीर सिंह सैखों नवे स्थान पर पहुंचे। महिलाएं मेडिसिन स्पर्धा समाप्त ही नहीं कर सकी और स्प्रिंट में साइकिलों के चक्के रिपेचेस तक पहुंचकर ही थम गए। तो ताइक्वांडो में क्या हुआ आइए जानते हैं साक्षी मंडवाल से एक बार फिर।
3: इंडिया कैंपेन इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पॉम्से इवेंट इन ताइक्वांडो एंडेड एज रूपा बेयर बाउड आउट ऑफ द सेमीफाइनल। शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स। दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल।
2: रग्बी सेवन के मुकाबलों में भारत पूल ई में है। हांगकांग से पहला मैच ही बहुत मुश्किल साबित हुआ भारत के लिए। इस स्पर्धा का पूरा विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: इंडिया वुमेन्स रग्बी सेवन टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव, दुमुनी मारंदी, संध्या राय, मामा नायक, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, गुरिया कुमारी, निर्मल्या राउत, संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगे हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द आईची नगोया 2026 Asian Games, suffering two heavy defeats in Pool B, Pool E in some classifications at the Paloma Mizuho Rugby Stadium. In match number 1, India was handed a defeat by Hong Kong China 33-7, while in match number 2, India was handed a defeat by People's Republic of China 43-5.
2: और अब पदक तालिका की ताजा स्थिति शाहिद आजमी से।
4: एशियन गेम्स 2026 में भारत के खाते में अब तक 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदक हैं और भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं मेडल टेबल पर चीन 154 स्वर्ण समेत 288 पदकों के साथ पहले, जापान 59 स्वर्ण समेत 217 पदकों के साथ दूसरे और दक्षिण कोरिया 30 स्वर्ण समेत 113 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
2: ये एशियाई खेल अपने समापन की ओर बढ़ चले हैं। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी भी पदकों के लिए पूरी रस्साकशी जारी है। वो सवाल जो प्रतियोगिताएं उठाती हैं, जिनके जवाब होते हैं स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक पाना, उसके लिए जद्दोजहद जारी है और भारतीय खिलाड़ी भी इसमें लगे हुए हैं। कल का दिन बहुत खास रहने वाला है क्योंकि महिला हॉकी का फाइनल है। सारी निगाहें वहीं रहेंगी। भारत की लड़कियां चीन के विरुद्ध उतरेंगी हॉकी के मैदान पर। बहुत शानदार मैच रहेगा ये। इसके बारे में जानना हो तो हमारी अपडेट्स आकाशवाणी पे हमारे साथ रखिएगा। भारतीय लड़कियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेला है। सबसे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से परास्त किया, उसके बाद इंडोनेशिया को 17-1 से, थाईलैंड को 20-1 से, जापान को 3-1 से, सिंगापुर को 7-0 से और सेमीफाइनल में कोरिया की मजबूत टीम को 2-0 से परास्त किया था। यानी पूरे जोश में होंगी लड़कियां और स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में आना चाहिए। कल और 3 स्वर्ण पदक हैं जिन पर भारतीय निगाहें रहेंगी। बॉक्सिंग के रिंग में उतरेंगे अंकुश पंघाल, परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोहेन। देखते हैं बॉक्सर्स भारत के लिए क्या करके दिखाते हैं। वैसे बॉक्सर्स ने अब तक के इन एशियाई खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, पहले से कहीं बेहतर। अगर प्रदर्शन ऊंचा हुआ है तो बॉक्सिंग वो स्पर्धा है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा करके दिखाया है। कुश्ती में भी कल भारतीय पहलवान बहुत कुछ कर गुजरने की चाह लेकर मैट पर उतरेंगे। फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल होंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत होंगे 125 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपांशी 50 किलोग्राम भार वर्ग में और प्रिया 76 किलोग्राम भार वर्ग में अपने दांव पेंच दिखाएंगे। तो आर्चरी में रिकर्व टीम की सेमीफाइनल स्पर्धाएं हैं। अंकिता भगत, कीर्ति और कुमकुम खेलेंगी चीन के विरुद्ध। इसके अलावा केनो स्लालोम में महिला और पुरुष के क्रॉस इंडिविजुअल हैं। साइकिलिंग में महिला ओमनियम, पुरुष काइरिन और पुरुष मेडिसन की प्रतियोगिता होगी। गोल्फ में पुरुष टीम राउंड 3 में खेलेगी और इसके अलावा इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले महिला और पुरुष का जारी रहेगा। रग्बी सेवन में मलेशिया के विरुद्ध मैच होगा। सेपक टॉकरा में महिला क्वाड्रेंट के मुकाबले होंगे। ताइक्वांडो में कशिश मलिक उतरेंगी और अब समय आ पहुंचा है विदा लेने का। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह 9:30 बजे से FM रेनबो पर नियमित अपडेट्स सुनना मत भूलिएगा और रात 10 बजे हमारा ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो फिलहाल मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
5: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
6: మీరింతవరకు 20వ ఆసియా క్రీడలు 2026 సంవత్సరం రోజువారీ ముఖ్యాంశాల